सुप्रभात, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ हो रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़

0: रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। तो आज के हमारे सभी श्रोताओं का वंदना कार्यक्रम के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है। भक्तगण सुबह सवेरे से ही मंदिरों में जाते हैं और शनि देव जी को मनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो न्यायप्रिय हैं। तो आइए हम भी शनि देव जी से विनती करें कि कहीं जाने अनजाने में कोई हमसे गलती हो गई हो तो उसको वो क्षमा

वंदना कार्यक्रम के अंत में आइए, अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये भक्ति रचना।

इस भजन के साथ आज की वंदना अब यहीं पर संपन्न होती है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्थ होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतमय ये प्रसंग। कलाकार थे ए हरिहरन और संगीतकार सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: नहि वेरेण वेराणी संवन्ति कुदाचन अवेरेण च संवन्ति एष धम्मो सनातनो। इस संसार में शत्रुता से शत्रुता कभी शांत नहीं होती, शत्रुता प्रेम से ही शांत होती है, यही सनातन नियम है। न परे संग विलोमान न परे संग कता कतं अत्तनोब अवेक्षय कतानि अकतानि च। दूसरों के विरुद्ध न तो कोई आचरण करे, न दूसरों के किए न किए की खोज में रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही किए न किए की खोज करे, अर्थात दूसरों की गलतियों की ओर देखने के बजाय अपनी ही गलतियों को देखना उत्तम है। न पुप्फ गंधो पटिबात मेति न चंदनं तगर मल्लिका वा सतंच गंधो पटिबात मेति सब्बा दिशा सब पुरिशो पवाती। न तो फूल की गंध और न चंदन या सुगंधित प्रलेप की गंध हवा की प्रतिकूल दिशा की ओर फैल सकती है, लेकिन संत पुरुष की सुगंध हवा की विपरीत दिशा की ओर भी फैलती है। सतपुरुष सभी दिशाओं में अपनी सुगंध फैलाते हैं। न जटा ही न गोत्ते ही न जच्चा होति ब्राह्मणो यम ही सच्चं च धम्मो च सो सुचि सोच ब्राह्मणो। न जटा से न गोत्र से और न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है जिसमें सच्चाई है और जो धर्मवान है वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है। न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्ति संभवं भो बाद नाम सो होति सवे होत सकिंचनो अकिंचनं अनादानं तम्हं ब्रूमि ब्राह्मणं। माता और योनि से उत्पन्न मात्र को मैं ब्राह्मण नहीं मानता, वह तो भोबादी है संग्रही है। मैं तो ब्राह्मण उसी को कहता हूँ जो अपरिग्रही और कामना रहित है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सारे पापों को न करना, पुण्यों का संग्रह करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना यही बुद्धों की शिक्षा है।
0: यह था हमारा आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हो रहे हैं। काव्यधारा में लीजिए सुनिए विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर श्री प्रदीप डेजी का ये काव्य पाठ।
2: नमस्कार, और अपने काव्य पाठ के माध्यम से एक वातावरण देना चाहता हूं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। विश्व जनसंख्या के दिवस की हो जय। विश्व

और आइए मुक्तकों के कुछ और मुक्तक आपको प्रस्तुत करके गजल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूंगा। वक्त की मार से बचने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह

कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा में हमारा आज का विषय है परिवार नियोजन के लाभ।
1: परिवार नियोजन एक ऐसा तरीका है जिससे कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो रोकी जा सकती है। अगर महिला नहीं चाहती गर्भधारण करना तो उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि एक बार गर्भधारण हो गया और महिला नहीं चाहती है तब तो उसको अबॉर्शन कराना पड़ेगा मिसकैरेज के लिए, फिर उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इससे अच्छा होता है कि उसको प्रिवेंट करना, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिवेंट कर लेंगे तो वो स्थिति नहीं आएगी कि उसको किसी कॉम्प्लिकेशन को झेलना पड़े। हमारा जो कंट्री है वो फर्स्ट कंट्री है जिसमें कि एक ऑर्गेनाइज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1950s में हो गया था ये स्टार्ट, एंड हमारा जो देश है वो फर्स्ट इस प्रकार का देश है जिसने कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम कंट्री में स्टार्ट करा है, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। एक तो है कि इसका लाभ जो है महिला को तो मिलेगा, इसके अलावा जो देश है वो भी आपका उससे भी उसको भी लाभ मिलेगा कि अगर पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल में रहेगी तो उससे क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो बेटर होंगे। अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं तो उनका लालन पालन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया भी जाएगा, और अगर उसी परिवार में 6 बच्चे हैं तो उन पे उतना ध्यान देना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो अर्निंग है वो तो लिमिटेड है, वो फिर 6 बच्चों में डिवाइड हो जाएगी ना कि 2 बच्चों में। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किसी भी परिवार का वो तभी मेंटेन रहेगा जबकि बच्चे कम होंगे। इसके अलावा जो आपका देश है वो तभी तरक्की करेगा अगर आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में है। मैं उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो हिंदुस्तान है उसका जो लैंड एरिया है वो 2.4% है, पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ लैंड एरिया है, पर हम लोग की जो पॉपुलेशन है वो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो हम इतने, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन, जबकि हमारा लैंड एरिया बहुत कम है। तो इसलिए हमारा देश उतनी तरक्की नहीं कर पा रहा है जितनी की

0: की देश कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे यूके है, वहां पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो परिवार नियोजन के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, 98% जो पॉपुलेशन है वो परिवार नियोजन का कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल कर रही है। और इसको अगर हम अपने देश से कंपेयर करते हैं तो हमारे देश में 48% जो पॉपुलेशन है वो ही परिवार नियोजन के तरीकों का फायदा उठा रही है। तो हमारे जो देशवासी हैं वो पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं इस योजना का। ज्यादातर जो इसके तरीके हैं वो सभी सरकारी अस्पतालों में एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में फ्री फैसिलिटी है। इसमें जो कुछ तो होते हैं टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ परमानेंट। मतलब परमानेंट होता है मेनली जो नसबंदी वाला ऑपरेशन होता है, जब महिला कराए चाहे वो पुरुष कराए, महिला इन पुरुष नसबंदी का वो परमानेंट तरीका है। वो तभी अपनाना चाहिए अगर आपका परिवार कंप्लीट है, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चा नहीं हो सकता है और उसको रिवर्स करने का बहुत अच्छे चांसेस नहीं होते हैं। इसके अलावा जो टेम्प्रेरी मेथड्स हैं उसमें एक होता है बैरियर मेथड, जिसमें कि निरोध कॉन्डोम्स वगैरह शामिल हैं। उसके अपनी एडवांटेजेस हैं, अपना लाभ है। उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे भी बचाव होता है, HIV इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन इन सब से बचाता है, और भी प्रकार के जो इन्फेक्शन है नलों में सूजन उससे भी बचाव होता है। तो ये मेथड, इनफैक्ट ये वाला मेथड जो है बैरियर मेथड, अगर कोई और मेथड भी यूज कर रही है महिला तो साथ में ये भी यूज करा जा सकता है, जिसको कि हम बोलते हैं डुअल प्रोटेक्शन। तो दोनों मेथड साथ में यूज करे जा सकते हैं। फिर होता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि कॉपर टी फ्री में लगती है हर एक केंद्र पर, तो वो महिला लगवा सकती है। उसके भी अपने फायदे होते हैं। फिर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, जो कि गर्भ निरोधक गोली होती है वो खानी होती है रोज। इसके अलावा इंजेक्शन होता है जिसको डिम्पा बोलते हैं, DMPA, वो हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लगता है और बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल है, 100 रुपीज में। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स 100 रुपीज में लगाते हैं और साल में 4 इंजेक्शन लगने होते हैं। वो है मेथड। और इसके अलावा नेचुरल मेथड्स भी होते हैं जो कि मतलब महिला यूज कर सकती है, सेफ पीरियड फॉलो कर सकती है। जो डेंजर पीरियड है, जो महावारी के 10वें से 20वें दिन, ये डेंजर पीरियड होता है, तो इसमें संपर्क में ना आए। इसके अलावा सेफ पीरियड है जिन दिनों बच्चा नहीं ठहरेगा, तो ये मेथड्स यूज करे जा सकते हैं।
1: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विषय था परिवार नियोजन के लाभ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, किसान भाई सुने खेती की बातें। आज का विषय है पशुओं में गर्भपात की समस्या और उसका समाधान।
2: किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम चर्चा करेंगे पशुओं में गर्भपात की समस्या और समाधान के संदर्भ में। किसान भाइयों, देखिए पशुपालन एक हमारा बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और किसान भाई हमारे कई फायदों के लिए पशु पालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हम पशुओं से दूध का उत्पादन करते हैं और उसकी बिक्री करके हम लाभ कमाते हैं। दूसरा भैया, सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इनका जो गोबर होता है उससे बहुत अच्छी खाद बनती है और वो जब हम अपने खेत में डालते हैं तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, हमारी फसल का उत्पादन बढ़ता है तो हमें अच्छी आमदनी होती है। लेकिन भैया देखिए, पशु जब हमें बहुत फायदा करते हैं तो पशुओं की देखभाल करना, पशुओं के रोगों से उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व बन जाता है। तो पशुओं में एक महत्वपूर्ण रोग होने की संभावना रहती है और वो है गर्भपात की समस्या और उसके समाधान के संदर्भ में हम बात करें तो देखिए, पशुओं में गर्भपात बहुत ज्यादा होता है तो ये क्यों होता है और ये गर्भपात ना हो और हो जाए तो उसका कैसे समाधान करें, इस विषय पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। देखिए पशुओं में जो गर्भपात कई कारणों से होता है, एक तो विषाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, उनकी वजह से भी ये गर्भपात हो सकता है। हमारी पशुशाला का व्यवस्थित ना होना, पशु के उठने बैठने का व्यवस्था बढ़िया ना होना, उनका ढंग अच्छा ना होना, पशु आपस में लड़ जाएं या उनमें परेशानी हो जाए, उसकी वजह से भी गर्भपात की समस्या हो सकती है। साथ साथ भैया ये भी कारण हो सकता है कि कई बार जो गाभिन पशु है उसको अन्य पशुओं के साथ बैठा दें और वो पशुओं के साथ कम जगह होने की वजह से गर्भपात हो सकता है। कुछ भैया ऐसे रोग भी हो सकते हैं जिनकी वजह से गर्भपात हो जाए कि जो अनुवांशिक रोग हो। खैर बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें ध्यान क्या रखना चाहिए। भैया ध्यान रखने की जहां तक बात है तो पशुओं के जो रखने का स्थान है या बांधने का स्थान है वो एक तो हवादार होना चाहिए, उसमें सूर्य की रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए। यदि किसी पशु में गर्भपात होने की संभावना प्रतीत हो रही है तो तुरंत उसे अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पशु जन्मने वाले पशु को भी ब्याने से 1 सप्ताह पहले

0: चारों की ओर भी जो पौष्टिक चारा है उनको भी हम देते रहें, जैसे भैया खल है, बिनौला है, चने की चूरी है, इस तरह के जो भोजन है उनको भी शामिल करें। इसके अलावा बाजार में भैया कुछ ऐसे मिले जुले भोजन आते हैं जिससे भैया हमारे पशुओं की ताकत बढ़ती है, हमारे पशुओं का जो शरीर है वो अच्छा होता है और उससे गर्भपात की समस्या शून्य हो जाती है, यानी कि गर्भपात होने की संभावना नहीं रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि पशु की हमें दिखाई दे रहा है कि उसको परेशानी है, तो हमें भैया तुरंत कुशल पशु चिकित्सक की देखरेख में पशु को रखना चाहिए और उससे लगातार निगरानी रखनी चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी दवाएं आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे टीके आ रहे हैं जिसको लगवा कर भैया हम पशुओं में गर्भपात की समस्या को सदैव के लिए, यानी कि पशु को फिर दोबारा हो ही ना, इसका भी समाधान कर सकते हैं। इसके लिए भैया हम शुरू से ये ध्यान दें, टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब पशुओं में टीकाकरण कराते हैं तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनसे हम पशुओं को सदैव के लिए छुटकारा पा देते हैं। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है जागरूकता का। यदि आप जागरूक होकर समय रहते अपने पशुओं की देखभाल करेंगे तो गर्भपात की समस्या आपके पशुओं को नहीं होगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके पशु भी स्वस्थ रहेंगे और सब रहेंगे, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो आज तो हम खेती की बातें यहीं संपन्न करते हैं, कल आपको अन्य विषयों के बारे में जानकारी अवश्य देंगे। किसान भाइयों, राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, विषय था पशुओं में गर्भपात की समस्या और उसका समाधान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती आज रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

जिंदगी हलचल, सवेरे 9:15 पर अनुप्रसारित की जाएगी हमारे लखनऊ केंद्र से। और आज के जिले रहेंगे अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर।

विविध क्रम में शाम 6:45 पर श्री राजेंद्र शर्मा की वार्ता का विषय रहेगा लोक कला पंडवानी की प्रवर्तक तीजन बाई।

आज के कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर लोकगीतों रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी प्रसारित किया जाएगा।

ये वो वाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर हमारे क्रम रहेंगे। कुछ खास है आज गीत आपके नाम से, स्क्रैप बुक बूस्टर्स और फिल्म संगीत के। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हमारे लिए नहीं है, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत्या साना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशु हानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है।
3: अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
2: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कल बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भदेश्वरनाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा।
3: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा। इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और गोरखपुर जिले को कुल मिलाकर 1,283 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 और गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। पटेकू अटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में तीन विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा तथा कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर का दौरा करने के पश्चात मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटट बांस स्थान में 4-लेन सड़क सहित 5 सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 19 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटट बांस स्थान 4-लेन मार्ग है। 11.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित है। समाचार कक्ष से रितेश।
2: पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कल पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे के समीप पौधा लगाकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1,071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट दिए और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करके देश का गौरव बढ़ाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की CBI जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की राशि की गिनती के काम में लगे 20 से अधिक कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच शेष बचे कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था और छुट्टियों में बदलाव किया गया है। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रदेश भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
5: इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
2: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश से हो रही जनहानि और पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मानसूनी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है।

0: एक रिपोर्ट।
1: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: भारी बारिश के चलते बदायूं और सीतापुर में आज कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशुहानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त मनोज वर्मा का नमस्कार। शनिवार की एक खुशनुमा सुबह में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साथ ही साथ उनके सुख समृद्ध और स्वस्थ रहने की ईश्वर से शुभकामना भी करते हैं। श्रोताओं, आज 11 जुलाई है और आज हम मना रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। यानी हर साल की 11 जुलाई को यह दिवस पूरे विश्व में जोर शोर से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने की थी। इस दिवस को मनाने की शुरुआत उस समय हुई जब दुनिया की जनसंख्या या आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जो चिंता का विषय था, क्योंकि किसी भी परिवार में परिवार का बढ़ना भी लोगों के जीवन, उनकी गुणवत्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी अच्छा खासा प्रभाव डालता है, क्योंकि इन सब की पूर्ति करने के लिए अच्छे रोजगार या साधनों का होना भी बहुत जरूरी है, जो आज की भी मांग है। इन सब विषयों पर विश्व की चर्चा और जनमानस को जागरूक करना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, हम आपको यह भी बता दें कि बढ़ती जनसंख्या से अन्य कई मुद्दे भी जुड़े होते हैं, जैसे पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन और सबसे अहम व्यक्ति का रोजगार, की व्यक्ति का रोजगार कैसा है। श्रोताओं, हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि पहला आधिकारिक विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सन 1990 को मनाया गया था। श्रोताओं, 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने के मुख्य उद्देश्यों की अगर बात हम करें तो बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव और पर्यावरण पर उनके प्रभावों के प्रति लोगों को सचेत करना, लोगों को परिवार नियोजन के लाभों, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ सतत यानी लगातार होने वाले विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जनसंख्या नियंत्रण की भूमिका को भी समझना है, जिससे जनमानस में जागरूकता बढ़े और विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरा हो सके और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये तो बात हुई विश्व जनसंख्या दिवस की और सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।

0: चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और आज के इस अंक में आपके साथ हैं मनोज वर्मा। एक बार फिर हम अपने सभी सुधीर श्रोताओं का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो नजर डाल लेते हैं बीते वर्षों के 11 जुलाई को हुई कुछ अहम घटनाओं की तरफ। तो 11 जुलाई सन 1979 को अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, जिसका नाम स्काई लैब था, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरी। ये प्रयोगशाला हिंद महासागर और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में गिरी थी। इसके गिरने से पहले पूरी दुनिया चिंतित थी कि ये पृथ्वी पर कहां गिरेगी और इससे कितना नुकसान होगा। इसके अलावा 11 जुलाई सन 1987 को दुनिया की जनसंख्या ने 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था और इसकी विस्तार से जानकारी हम आपको दे चुके हैं। 11 जुलाई सन 2003 में भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन हुआ। आप आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ और महान कथाकार के रूप में माने गए थे। उन्हें भारत विभाजन की त्रासदी पर उपन्यास तमस के लिए विशेष ख्याति मिली, जिस पर प्रसिद्ध फिल्मकार गोविंद निहलानी ने टेलीफिल्म भी बनाई थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन और श्रद्धांजलि। 11 जुलाई सन 1956 को हिंदी सिनेमा के अभिनेता और व्यवसायी कुमार गौरव का जन्म हुआ। आप अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1981 में बनी फिल्म लव स्टोरी से की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद वे तेरी कसम और नाम जैसी फिल्मों में भी नजर आए। आज उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें आकाशवाणी नजीबाबाद और हमारी तरफ से ढेरों बधाइयां। और ये बात हमने की थी लव स्टोरी फिल्म से उनके करियर की शुरुआत की, तो आपको गीत याद आया होगा, देखो मैंने देखा है एक सपना, है ना। बड़ा उस दौर में ये गीत चला था। वही गीत आपको याद आ रहा होगा और इसको कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे होंगे कि भाई ये गीत उस दौर में बहुत चला था। वही गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने कार्यक्रम सूरज के साथ साथ के जरिए।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। एक बार फिर हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में आगे बढ़ेंगे और श्रोताओं, अब हम आपसे एक ऐसी चर्चा करेंगे जो हर माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हमारे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और अनेक माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को खुद स्कूल ले जाते हैं और अगर उनके पास समय होता है तो वे वापस भी खुद ही लाते हैं। ऐसा वे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए करना पसंद करते हैं। लेकिन हम उन माता पिता या अभिभावकों से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा है कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल ले जाते या वापस लाते समय यातायात के नियमों का पालन करना सिखाया जाए? तो इसका जवाब शायद ना होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, ऐसा तो हमने भी कभी सोचा ही नहीं, और मुस्कुरा रहे होंगे। तो श्रोताओं, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भी बच्चों को स्कूल ले जाते हैं या वापस लाने की कोशिश करते हैं तो उनको सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करना ज़रूर बताएं। जैसे अगर आप स्कूटर या मोटरसाइकिल पर हैं तो अपने साथ साथ बच्चे को भी हेलमेट की आदत डालें। इसके अलावा अगर आपके पास कार है तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूर समझें और बच्चे को भी समझाएं। दोपहिया वाहन के साथ साथ कार आदि की स्पीड का विशेष ख्याल रखें, नियंत्रण में चलाएं और बच्चे में भी ये आदत विकसित करें। अगर आप स्कूल क्षेत्र में हैं तो वाहन धीमी गति से चलाएं, क्योंकि वहां पर अन्य वाहन और बच्चे भी आ जा रहे होते हैं। इसके साथ ही स्कूल के सामने गलत पार्किंग ना करें, बच्चे को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करने की सीख दें। उनका हाथ हमेशा मजबूती से पकड़ें, जब स्कूल बस आदि रुक जाए तो उन्हें तभी बस से उतरने चढ़ने की सलाह देनी चाहिए। स्कूल बस या कार से चलते समय उन्हें सिर बाहर निकालने के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि इससे वाहन भी सड़क पर आ जा रहे होते हैं। ऐसे में सिर में चोट भी लगने का खतरा बना रहता है। अगर आप स्कूल पैदल छोड़ने जाते हैं तो उन्हें हमेशा फुटपाथ से ही लेकर जाएं और सिखाएं भी। फुटपाथ पर सामने से आने वाले वाहन का भी उन्हें ध्यान रखना सिखाएं और बच्चों को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में भी विस्तार से बताएं कि लाल बत्ती का मतलब रुकना, पीली का तैयार होना और हरी बत्ती का मतलब चलना होता है। इसके साथ ही सड़क पर बने संकेतों को भी उन्हें जानकारी दें। इस तरह आप बच्चों को शुरू से ही यातायात के नियमों का पालन करना सिखा देंगे और उन्हें इन नियमों को सीखने के बाद अपने पूरे जीवन में कोई यातायात संबंधी परेशानी नहीं होगी। तो ये बात हुई, बच्चों को स्कूल ले जाते समय यातायात के नियमों का पालन कराएं इस अहम विषय पर। और चलते चलते नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की अहम सुर्खियों पर। तो अमर उजाला की अगर मैं बात करूं तो किसी भी समारोह में अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक साथ प्रस्तुति देनी होती है तो पहले वंदे मातरम और फिर जनगण मन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए निर्देश जारी कर इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा ब्रह्मोस और बराक 8 जैसे उन्नत मिसाइल प्रणालियों से लैस स्टील्थ युद्धपोत महेंद्र गिरी आज विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया जाएगा। बात की जाए अगर दैनिक जागरण में प्रकाशित होने वाली इन अहम सुर्खियों की, तो जिला बिजनौर में आने वाली 12 जुलाई को यानी कल पौधारोपण अभियान के अंतर्गत लगभग 76 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026 और 27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होंगे। बात करें हिंदुस्तान की तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68,500 सहायक अध्यापकों अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में फिर से ओबीसी अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में 5% की छूट दिए जाने का फैसला सुनाया है। तो ये थी अहम सुर्खियां आज के अखबारों से, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं ये गीत।

और इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की मनोज वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, अपना खास ख्याल रखें।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए

0: ऑकलैंड न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरि को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए

0: और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
3: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News.
2: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
4: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
2: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Welcoming Prime Minister Modi, Mr. Luxon said,

कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजों में। फिल्म का नाम था चश्मे बद्दूर। इंदु जैन ने इस गीत को लिखा था और राज कमल ने इसकी धुन तैयार की थी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म डॉन से, आवाज है आशा भोसले की। अनजान ने इस गीत को लिखा है और इसको संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम प्रोफेसर प्यारे लाल। आवाजें हैं मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने इसकी धुन तैयार की है।

बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने में आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म का नाम था प्रोफेसर प्यारेलाल। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना भाभी फिल्म का ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था और चित्रगुप्त ने इसकी धुन तैयार की थी। समय 9:09 और 20 सेकंड। एक गीत अभी हमारे पास और है, सुनवाते हैं आपको ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
2: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर स्थलीय निरीक्षण और गबन की धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 69,85,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस आगे भी आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई अहम बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की दान की गई सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिसे दानकर्ता ट्रस्ट से संपर्क करके देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें रसीद नहीं मिली है तो अब रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। SIT जांच रिपोर्ट के बाद आगे के अन्य निर्णय लिए जाएंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अयोध्या में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए DTB योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर योजना की शुरुआत की। इसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए गए। वहीं DTB योजना के तहत जिले के 1,14,669 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1200 रुपए की धनराशि भेजी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा कर मखाने की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद स्थापित किया। कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक किसानों को बेहतर दिशा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
3: पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमने अलग अलग विकल्प यहाँ के देखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देखा और यहाँ किसान भाइयों और बहनों के साथ खेत बचाओ अभियान पर यहाँ चर्चा की। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
2: अयोध्या को एक और सौगात के रूप में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। नगर निगम के PPE मॉडल पर तैयार इस म्यूजियम में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और लंका विजय तक के रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मोम की प्रतिमाओं के जरिए प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के संस्थापक सुनील कंडलूर ने बताया कि दूसरे चरण में रामायण से जुड़े और प्रसंगों को भी भव्य रूप दिया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगरी पहुंचे देवेंद्र सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
4: चेकिंग अभियान हमारा जारी रहेगा। तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 36 कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको सबको हम थोरोली चेक करेंगे। NOC जब भी इशू किया जाता है, जब उनके जो मानक है हमारा निर्धारित मानक वो पूरा करते हैं, जब भी जारी करता है। बाद में जो पर्पज होता है चेकिंग अभियान का वो ये रहता है कि जो अरेंजमेंट्स लगे हैं समय के साथ कई बार वो जाने अनजाने या किसी कारण निष्क्रिय या अकार्यशील हो जाते हैं।
1: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 में स्थित अंबर एवं एसेंट के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट

0: का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। लगभग 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सेक्टर 8 में 8,200 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। 200 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक संयंत्र 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता से युक्त होगा। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है।
0: इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों को पीसीबी के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
1: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में एक नई स्वीकृति दी है बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन ये मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदल देने का।
0: केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज यूपी को उत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक निवेश और विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानें शुरू होने के बाद कार्गो उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। 17 जून को एयर इंडिया सेट्स ने भारत के पहले एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब से माल ढुलाई के काम को शुरू कर दिया। इसे भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की पहली वाणिज्यिक शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रापू राममोहन नायडू ने इस मौके को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी व लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और देश भर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। घटन ऊर्जा में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरन सिंह व श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जिसमें वर्तमान समय का जो युवा शक्ति है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के दूतावास और कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ईडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने ईडा क्षेत्र की निवेश क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईडा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों में निवेश हो रहा है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर मिशन शक्ति सेट से सहभागिता स्थापित की है। इस ऐतिहासिक मिशन में विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख शैक्षणिक एवं संस्थागत भागीदारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह महत्वाकांक्षी मिशन एरोस्पेस संस्था, स्पेस किड्स इंडिया तथा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक एवं प्रोत्साहन संस्थान इन स्पेस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि सक्सेस मिशन से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जुड़ना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मधु वर्मा के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत। पहले सुनते हैं इनकी आवाज में ये रुहेलखंडी लोकगीत।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

मधु वर्मा की आवाज में सुना ये रोहिलखंडी लोकगीत। धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मधु वर्मा के गाए कुछ रोहिलखंडी लोकगीत।

मधु वर्मा की आवाज में आपने सुना ये रुहेलखंडी लोकगीत। धरती गाती है कार्यक्रम आप इस समय आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और आज आप सुन रहे हैं मधु वर्मा के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत।

धरती गाती है कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मधु वर्मा के गाए कुछ रुहेलखंडी लोकगीत।

इससे पहले कि हम आपको कार्यक्रम का अंतिम रुहेलखंडी लोकगीत सुनवाएं, हम आपको बता दें कि आज के लोकधारा कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे गुरदास मान के गाए कुछ पंजाबी लोकगीत। एक ही गीतकार क्रम में आज हमारे गीतकार होंगे असद भोपाली, दिन में 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में आज शाम 5 बजे राष्ट्रीय आयुष मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जानकारी दी जाएगी। और यह है आज के कार्यक्रम का अंतिम रुहेलखंडी लोकगीत, आवाज मधु वर्मा की।

मधु वर्मा के गाए इस रुहेलखंडी लोकगीत के साथ आज का धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, 10 बज रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे। तो गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मनोज वर्मा का नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, और सिलसिला वही रहेगा आपकी पसंद के गीतों को सुनवाने का और आपके SMS पढ़ने का। जिस नंबर पर आप हमें SMS करेंगे वो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 94-570-78-288, और इसको अगर हम अंग्रेज़ी में कहें तो 9457078288, ये नंबर हमारा रहेगा जिस पर आपको SMS हमें करने हैं। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ, श्रोताओं के मैसेज मुझे मिलने शुरू हो गए हैं। जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखिए हमारे श्रोता हैं, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदराने, हिना कौसर। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। के अलावा आप ये मैसेज मुझे मिल रहा है, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा ये मैसेज दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं, ये हमारे श्रोता हैं। भाई हो क्या रहा है कि हमारे श्रोता एक बार हमने रीड कर दिया अभी और उसके बाद में तुरंत उन्होंने भेज दिया, तो भाई कोशिश करें कि इस बात से आप बच लें, है ना। चलिए खैर अगला मैसेज मैं ले रहा हूँ, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर। के अलावा ये मैसेज मुझे मिल रहा है, दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी का। साथ ही देखिए भाई ये मैसेज और मेरे पास है, हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी काना, श्रीमती मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़ राजस्थान से, नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा, फुंदी भाई बागरी और इसके अलावा इनका पूरा परिवार हमें मैसेज कर रहा है और ये मैसेज लगातार मिल रहे हैं भाई। नगर पंचायत बड़ापुर बिजनौर से हम ताहिर और उजैफ। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज, एकदम बोल्ड लेटर्स में हिंदी में लिखा है, बहुत शानदार मैसेज। मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन चंद, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार, नाजमा बेगम, नाज भाभी, सरिता गौतम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, हैं कहाँ से, रेलवे रोड गंजडुंडवारा से। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई देखे मेरे श्रोता ये भी हैं, पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, अर्जू जाजौरिया और गुड्डू। के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद यहाँ से भी हैं, बठिंडा रोड मंडी डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और इनका पूरा परिवार। ये मैसेज जी ये मैसेज मैं ले रहा हूं, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमान गांव लाहौड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन और सुधीर नूतन भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा इन्हीं के मैसेज में करावल नगर दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और ये मैसेज मुझे मिल रहा है, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि, बाला साहेब कारवा, रामनिवास, धनंजय टवलू और पीबी कुलथे का। एक मैसेज और मैं ले रहा हूं, नई दिल्ली से है ये, टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और ये मैसेज ये मैसेज लेते हैं, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी,
प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनका पूरा परिवार कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल के अलावा ये मैसेज मुझे मिल रहा है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। और ये मैसेज और मैं लेता हूँ साहब, ये मैसेज कोपर गांव से सुरेश, मलोदेव, वर्षा, श्रद्धा, मानसी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई हमारे ये श्रोता भी हैं, ये हैं भाई। देखिए मैसेज हमने खोल तो लिया था मगर क्या करें कि वो दोबारा मिल रहा है हमें। चलिए खैर, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत अर्जुन गवाणकर, टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई एक मैसेज और लेते हैं फिर गीत सुनवा देंगे आपको। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजौरिया और गुड्डू, सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना मेरे हम सफ़र फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश आप सबकी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे आप सभी श्रोता। मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनाम यशफ अब्बासी और रसीद अब्बासी किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से श्रोता हैं जुबैर अली, जुबैर अली ख़ान, सबीहा अंजुमन ख़ान और इनके बहुत सारे साथी। ये फरमाइश हम तक पहुंची है तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मामा दानिश सिद्दीकी, हमज़ा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा की। फरमाइश व्हाट्सएप पर हमें मिली है ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगता। कार्यक्रम के इस गीत के लिए फरमाइश हम तक पहुंची है गांव जेवरा हिसार से श्रोता हैं वीरेंद्र भयाण, सुरेंद्र भयाण, शमशेर भयाण और मनोज भयाण। ये एक और फरमाइश आई है नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नास, सलमा नाज, असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी। नाला सोपारा मुंबई से मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रुमा में माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख और शेख मोहम्मद कलीम। एक और फरमाइश हम तक पहुंची है भाई हमारे श्रोता दोबारा दोबारा फरमाइश कर रहे हैं। श्रोताओं प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें, एक श्रोता आज के कार्यक्रम में बस एक बार ही अपनी फरमाइश लिखकर भेजिए जिससे कि हमारे दूसरे श्रोताओं का भी मैसेज पढ़ा जा सके और उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। ये एक और फरमाइश पहुँची है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिका फूलमाली की। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत,

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तो श्रोताओं, इस खास संदेश के बाद लीजिए अब सुनवाते हैं आपको ये गीत फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, आवाज अलका याग्निक और कुमार सानू की है।

मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। अगले गीत के लिए फरमाइश करने वाले हैं हमारे आप सब श्रोता। ग्राम गदरोना से मदन गिरी, बिमला गिरी, बलराम गिरी, भारत गिरी, मधु गिरी, सोनिया गिरी, गोविंद गिरी, सिमरन गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी, दिव्या गिरी के अलावा गांव उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य उनके। इसके अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और इनका पूरा परिवार, चकला बाजार समाना शहर से पंजाब से। जी हाँ, पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हंसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा ही खुश दिल परिवार के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श।

और इनका पूरा परिवार। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और पूरा परिवार। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल राजेश के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप भी हैं। नई बस्ती गंजुंडवाड़ा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रेटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, यासना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और इनका पूरा परिवार। फरमाइश करने वाले हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। ये हैं साहब हमारे श्रोता। शेरवानी स्कूल गंडुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। ये मैसेज कुलम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर से सुरेंद्र संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा, संधू और मैक्स के अलावा गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। श्री गणेश, अविका आर्ट, श्री रामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका, जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना कुम्भार के अलावा सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्भार गली से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका के अलावा पुनावले, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवणे के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। बोड़खेड़ा पित्रमल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा और इनका पूरा परिवार के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। कासगंज से मास्टर राधे श्याम शाक्य और इनका पूरा परिवार। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दविंदर, वरिंदर, कुलदीप, सेमू, एकम, दमन और अभिजीत के अलावा प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल और बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और पूरा ही जाधव परिवार इस मैसेज में जुड़ा हुआ है। सुनवा देते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, जो गीत अभी आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म क्या कहना से, आवाज कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की थी। और मनोज, अगली फरमाइश पढ़ने से पहले क्यों ना अपने श्रोताओं को, जो अभी अभी रेडियो से जुड़े हैं और आकाशवाणी नजीबाबाद को सुन रहे हैं, तो क्यों ना अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें जिससे कि वो हमें फरमाइश लिखकर भेज सके।
1: तो आप बताना चाह रहे हो या हम बताएं?
0: मुझे लगता है दोनों ही बता देते हैं।
1: चलिए हिंदी में आप बता दीजिए, अंग्रेजी में।
0: जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है 9457078288। और
1: अंग्रेजी की बात अगर मैं करूँ तो भाई जैसा तय हुआ था रेणु कोटनाला और मेरे बीच में, तो भाई 9457078288 ये नंबर बिल्कुल याद होने वाला है। और भाई रेणु जो है ना तैयार हैं आपके एसएमएस पढ़ने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश लिखकर भेजी है हमें बलहार शाह से सूरज लोंडे, प्राची और एकलव्य ने। अगली फरमाइश मिली है मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा और इनके साथियों की। आराधना रेडियो श्रोता संघ से श्रोता हैं सोपान तायड़े, बसंत राव भोजने, पी एस नवाकर और इनके साथी। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, अतुल वर्मा, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। गीत सुनना चाहा है गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर और इनके साथियों ने। विलेज और पोस्ट राहू नंगली से हमारे श्रोता हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और इनके बहुत सारे साथी। ये फरमाइश मिली है हमें सल्लार पहलगाम कश्मीर से, बहुत दूर से ये फरमाइश हम तक पहुंची है, पीरजादा मिराज दिन की और इनके साथियों की। छटिया पोखर डुमराव से श्रोता हैं फातिमा वली बेलदार, डब्बू वली, अस्मा वली, सोनम वली। और बिहार भवन दिल्ली से ये फरमाइश मिली है सरफुद्दीन कुटरिया और सुरीत रमेश कुटरिया की। गीत सुनना चाहा है शास्त्री नगर बीड शहर से किसन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, सायरा सबकाल और विशाल सबकाल की। ऑरेंज सिटी नागपुर से की सुनना चाहा है विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजी जाधव। और छत्रपति संभाजी नगर से श्रोता है मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज। ये फरमाइश आई है बिहार स्टेट से मोहम्मद याकूब आसमा फकीर, मोहम्मद यूसुफ आसमा फकीर, मोहम्मद सलीम आसमा फकीर और मोहम्मद कलीम आसमा फकीर की।
1: तो सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में आपने सुना त्रिदेव फिल्म का ये गीत, और गीत तुम्हारे कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूँ मनोज वर्मा, और मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरी साथी।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज कार्यक्रम में आपके साथ इस समय मैं हूँ रेणु कोटनाला।
0: और बारी वही है कि फिर एक बार आपके खतों को शामिल कर लें। तो भाई, खतों से पहले हम ये चाह रहे हैं कि ये कैसे में शामिल कर लें, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। मार हरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी। इसके अलावा भाई इसी मैसेज में किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खां, सबिया अंजुम खां और इनका पूरा परिवार के अलावा कुछ खत लेने का वादा था हमारा जिला मुरादाबाद के, तो हम SMS पढ़ ही चुके हैं। ये मैसेज खत के रूप में हमारे हाथ में है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर, ग्राम जुझैला, थाना शिवाला कलां, बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर, शाही मार्केट से और जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अरफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी, कस्बा चिलकाना से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, आमिर अंसारी, तेलीपुरा रवाना शिकारपुर तलाई से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, मोहम्मद उमेर अंसारी के अलावा अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक, आदर्श नगर मलोट पंजाब से ही राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। और ये खत है मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से हमारे नियमित श्रोता हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत के अलावा ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, आराधना और इनका पूरा परिवार, सहारनपुर दाऊदसराय से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम साबरी, अमन साबरी, दूलापुर मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और उनका पूरा परिवार के अलावा ये खत है मेरे हाथ में लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा का, ग्राम पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से और कस्बा मीरगंज बरेली के हमारे श्रोता हैं भाई कल्लू मिस्त्री और उनका पूरा परिवार। और एक खत और है हमारे हाथ में मौला बकर का साबान शेरकुट बिजनौर का खत है ये रऊफ अहमद निजामुद्दीन, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान और इनका पूरा परिवार। सुनिएगा कार्यक्रम का अगला गीत अपनी पसंद पर।

0: सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में आपने खुशी फिल्म का ये गीत सुना, और एक अंतिम गीत और है हमारे पास सिर्फ और
1: जी
0: सिर्फ। और इसके अंदर हमारी ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम दोनों ही इस अंतिम गीत के लिए फरमाइश आपकी पढ़ दें, है ना।
1: जी हाँ,
0: तो शुरुआत करा देते हैं रेणु से।
1: श्रोताओं, ये फरमाइश हमें मिली है सालपुरा जिला बारा से राज सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता अभिषेक और इनके सभी साथियों की। जलालाबाद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और नीमित आहूजा, नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर और इनके साथी। करुला मुरादाबाद से अयूब खान इरमगुड़िया और शोएब खान, सिंदौली बरेली से हैं जीशान वारसी, अब्दुल
0: खाली
1: खालिक पत्थर वाली मस्जिद जलालाबाद से हैं, अब्दुल मलिक, अब्दुल तालिब, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आफिफ और कलसुम बेगम, मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से श्रोता हैं हमारे भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। ये फरमाइश हम तक पहुंची है गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशब्बत की। फरमाइश लिखकर भेजी है हमें सैयद आलम हाशमी और हाशमी परिवार के सभी सदस्यों ने नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। दिलावर खां, हसीना बानो, एलिजा, नायाब और लड्डू ये फरमाइश लिखकर भेज रहे हैं हमें रघुवीर नगर दिल्ली से। एक और फरमाइश हमें मिली है दादरी गेट भिवानी से, श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके साथी। गीत सुनना चाहा है बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया, वीर और अबीर ने। नवाबगंज कानपुर से श्रोता है श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया और इनके सभी साथी। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद पाकुड़ झारखंड से और बूढ़ा गाछी पश्चिम बंगाल से फरमाइश आई है मुन्ना भगत और गुड्डी भगत की। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवी, जसी, सीता और गीता। और फरमाइश लिखने के लिए, शामिल करने के लिए श्रोता धन्यवाद भी कर रहे हैं, तो शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का भी कि आप लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से इस समय कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एक और फरमाइश हम तक पहुंची है अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना की लदावली जिला मुरादाबाद से। ये श्रोता हैं हमारे जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से, और जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिहानस और रेहान, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और इनके सभी परिवार के सदस्य। कुमार
0: और
1: हेड़ा सहारनपुर से हैं।
0: हाँ बिल्कुल, हमारे श्रोता हैं नियमित और हमारी बारी है अब
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल
0: और देखिए भाई, जैन मंदिर वाली गली कुरा वाली से राशिद हुसैन, सारी भाई देखिए पढ़ चुके हैं हम, है ना। नाम हमारे श्रोता भाई क्या करते हैं कि बस उनका प्रेम इतना है कि
1: अलग
0: भाई
1: अलग नंबर से
0: हाँ
1: भी
0: अलग अलग नंबर से भाई भेजते रहो बस, ये नहीं तो ये और कहीं मैसेज करके चले जाते हैं। वो हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके, उत्तम जमदाड़े के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद भाई आप भी हैं, फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जुहानुल हुदा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार के हमारे श्रोता हैं। इसके अलावा ये मैसेज मुझे मिल रहा है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ का। इसके अलावा भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, लाली श्रीवास्तव, आशा राधिका और श्रीवास्तव परिवार, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता और इनका पूरा परिवार, बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया और कुणाल इनके साथ हैं। ये मैसेज मुझे मिल रहा है गंडुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, सब्जी मंडी नजीबाबाद से विष्णु अग्रवाल, रानी अग्रवाल और इनका पूरा परिवार, मौला धर्मदास नजीबाबाद से गुलाम हसन, निशात बानो, साबरा, विलायती शहजादी, सलमान और शराफत के अलावा इनका पूरा परिवार, और हमारे नियमित श्रोता बिल्कुल नगीना से अनिल विनोचा, शम्मी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार बिल्कुल हमने शामिल कर लिया इस गीत के लिए। भाई देखिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी और पूरा अंसारी परिवार। ये मैसेज बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान के अलावा ये मैसेज है। जी हाँ, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश, कुमारी प्रणाली, कुमारी सरवद, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख के अलावा इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, और 10:55 हो गए हैं। एक मैसेज और लेते हैं आखिरी आखिरी गीत के लिए। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और इनका पूरा परिवार। सुनिएगा अपनी पसंद का अंतिम गीत।

ये गीत आप सुन रहे हैं जोश फिल्म का, अभिजीत की आवाज़ में। और इस गीत के साथ ही मुझे यानी मनोज वर्मा को आज के कार्यक्रमों के साथ और गीत तुम्हारे से दीजिए अनुमति। नमस्कार, और यहाँ से आपके साथ रहेंगी रेणु कोटनाला।

वेव 314.4 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में।

0: जी हाँ श्रोताओं, हम आ गए हैं कार्यक्रम में और आगाज हो चुका है कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। ये जो गीत आपने सुना, इसे हमने लिया था फिल्म आंधी से, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी, शब्द रचना थी गुलजार की और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अनुरोध से, आवाज किशोर कुमार की है, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं लीजिए सुनिए अब फिल्म बातों बातों में का गीत, स्वर किशोर कुमार और आशा भोसले का है, गीतकार है अमित खन्ना और संगीतकार राजेश रोशन।

मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। आशा भोसले एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। फिल्म थी अंधा कानून। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से।

सुनैना फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज येसुदास की थी, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म बेताब से स्वरलता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का है, शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का।

आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज़ में फिल्म थी बेताब। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले अपने श्रोताओं को एक कार्यक्रम संबंधी जानकारी दे दें। श्रोताओं, आज दिन में 12:05 पर कार्यक्रम होगा जिंदगी लाइव। ये कार्यक्रम कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित होगा और हमारा आज का विषय है अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव। जी हाँ, हमारा आज का विषय है अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाला दबाव। और इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, आप हमसे साझा कर सकते हैं आज दिन में 12:05 पर। और ये व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम होगा, तो आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा। और अब लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म नूरी से आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना फिल्म नूरी का गीत। जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था खयाम ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले ये संदेश।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: और श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें, आज दिन में 12:05 पर श्रोताओं सुनिएगा कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और ये कार्यक्रम है कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित। और इसमें हमारा जो आज का विषय रहेगा वो रहेगा अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं आप हमसे साझा कीजिएगा। और साझा करने के लिए नंबर रहेगा वही 9457078288। आपके महत्वपूर्ण संदेशों का कार्यक्रम में हम इंतज़ार करेंगे। और लीजिए सुनिए अब कार्यक्रम का अगला गीत यशोदास की आवाज़ में। फिल्म है सावन को आने दो, गीतकार फॉग जमी और संगीतकार राजकमल।

श्रोताओं, भी आपने सुना यशोदास की आवाज़ में फिल्म सावन को आने दो का गीत। गीत लिखा था फौक जमी ने और संगीत दिया था राजकमल ने। आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में। फिल्म है दो दिलों की दास्तां, गीत अनजान का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं के लिए हमने लिया है फिल्म बलमा से, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की, शब्द रचना समीर की और संगीत नदीम शवन का।

अश्वत्थामा आप कुमार सानू और अलका याग्निक के गाये फिल्म बलमा के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। श्रोताओं, एक नज़र डालते हैं हमारे आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर।

आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से थोड़ी ही देर में यानी दिन में 12:05 पर कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम होगा जिंदगी लाइव, जिसमें आज का विषय रहेगा अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव। समय याद रखिएगा, आज दिन में 12:05 पर।

महिला जगत कार्यक्रम में आज दिन में 1:15 पर क्रम रहेगा आधी आबादी से। सुनिएगा फिल्म संगीत और साथ ही क्रम रहेगा चलते चलते।

आज शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित पहले के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विषय पर जानकारी हम अपने श्रोताओं को देंगे। समय याद रखिएगा, संध्या 5 बजे। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:15 पर आज का आकर्षण रहेगा कुछ खास है। आज गीत आपके नाम स्क्रैप बुक और युवा श्रोता आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का।

हमारे किसान श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत संध्या 6:05 पर, जिसमें लोक गीतों रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। हेलो लोक मंजरी।

संध्या 6:45 पर विविधा के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे श्री राजेंद्र शर्मा की वार्ता। विषय होगा लोक कला पंडवानी की प्रवर्तक तीजन बाई। समय याद रखिएगा संध्या 6:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर आनंद लीजिएगा वंशिका सोती के गाए भजनों का।

तो श्रोताओं, ये थी एक नज़र हमारे आज के प्रमुख कार्यक्रमों पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। अब पेश है कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आपके साथ मैं हूँ रेणु कोटनाला। और श्रोताओं, अगले 55 मिनट तक हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर आज बात करेंगे जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है। जी हाँ श्रोताओं, आज बात करेंगे अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर बढ़ता दबाव विषय पर। है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी लाइव कार्यक्रम सिर्फ एक जानकारी देने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपकी भागीदारी वाला कार्यक्रम है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आज हम आपसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। आप अपने विचार, अनुभव और सुझाव हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। उम्मीद है आपके संदेश कार्यक्रम में आज ज़रूर शामिल किए जाएंगे। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर वही है, आपका अपना जाना पहचाना, 9457078288। जी हाँ, 9457078288। श्रोताओं, हम चाहते हैं कि आप हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो हम आपसे पूछ रहे हैं आज के विषय से जुड़े हुए प्रश्न। आपको क्या लगता है श्रोताओं, कि बढ़ती जनसंख्या का असर हमारे आसपास के पर्यावरण पर दिखाई दे रहा है? क्या लगता है आपको? या फिर आपके अनुसार आज सबसे बड़ी पर्यावरण की समस्या क्या है? पानी की कमी, प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, या फिर बढ़ता कचरा? या फिर अगर आपको पर्यावरण बचाने के लिए सिर्फ एक कोई काम चुनना हो तो आप क्या करेंगे? आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे श्रोता का क्या संदेश है, क्या उनकी राय है जो आज कार्यक्रम में वो हमें देना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं। आपके संदेशों का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का आज का ये पहला गीत।

बूंद जो बन गई मोती, आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाज़ मुकेश की थी। श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं जिंदगी लाइव कार्यक्रम, जो कि कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है, और हमारा आज का विषय है अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रोताओं आज का ये विषय है। उम्मीद है कि आप अपने विचार, अपने जो भी आपकी राय है, जो भी आप साझा करना चाहते हैं, आप कार्यक्रम में मैसेज के माध्यम से ज़रूर कहेंगे। और कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। जी हाँ, हमारा नंबर है 9457078288। आपके मैसेजेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक मैसेज हमें मिला है गांव दूलापुर से, श्रोता है मोहम्मद फरमान। हालांकि इन्होंने मैसेज जो हमारा आज का विषय है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि कार्यक्रम का पहला मैसेज है तो हम शामिल कर रहे हैं। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। बहुत खूब। लेकिन फरमान साहब, हमारा आज का विषय आपको हमने भी बताया, अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव, इस विषय पर हम चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर्यावरण का आपके जीवन में क्या महत्व है। और श्रोताओं, जैसे कि आपको पता ही है कि आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से चाहते हैं कि आप अपने प्यारे प्यारे मैसेज, महत्वपूर्ण मैसेज, अपने सुझाव इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। श्रोताओं, जब हम धरती की सुंदरता को देखते हैं तो दिल में यही ख्याल आता है और यही भाव आता है कि प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम इस अनमोल धरोहर को उसी तरह संभाल पा रहे हैं जैसे हमें ये मिली थी। आइए इसी सोच के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और एक श्रोता का मैसेज हमारे पास आया है। ये हमारे श्रोता हैं ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का लिखते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ देखा जा रहा है कि पेड़ अधिक काटे जा रहे हैं, धुएं वाले वाहन बढ़ रहे हैं, जिससे अधिक गर्मी, बहुत बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ काटने से प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, जगह जगह घर बन रहे हैं, पीने का पानी भी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। ये सब जनसंख्या के कारण ही हो रहा है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने मुकेश कश्यप जी, और आप हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत पुराने हमारे श्रोता हैं। लोगों ने गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ले ली हैं, और सभी लोग, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो जितनी गाड़ियां हैं लगभग सभी अपनी अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो भाई देखिए, मुकेश जी ने जानकारी तो दी है कि किस वजह से पर्यावरण का दबाव बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता कुछ सुझाव भी दें, उनके क्या विचार हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, किस तरह से जो ये जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, मानव पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कुछ ऐसा विचार साझा कीजिए, ऐसे सुझाव दीजिए कि जिससे सुनकर लोग जागरूक हो सकें। आपके मैसेजेस का श्रोताओं हम कार्यक्रम में इंतज़ार कर रहे हैं। श्रोताओं, हमारे आसपास पहले काफ़ी पेड़ थे, है ना, लेकिन अब उन्हें काटकर नई कॉलोनियां बनने के कारण हरियाली भी कम होती जा

सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया गीत आपने सुना, फिल्म थे रिफ्यूजी। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत था अनु मलिक का। आप सुन रहे हैं कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और श्रोताओं, जिंदगी लाइव कार्यक्रम में आज हम आपसे बात कर रहे हैं अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव विषय पर। आपसे चाहते हैं कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, क्या सुझाव आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9457078288 पर। और हमारे एक श्रोता का मैसेज आया है, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद अवैस और डॉक्टर विजय का, ग्राम मीरामपुर बेगा, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि प्लीज़ हमारा मैसेज शामिल कीजिए। तो देखिए, हम इसीलिए यहाँ पर हैं कि आपके मैसेजेस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। तो इन्होंने लिखा है कि आज पर्यावरण की सबसे बड़ी चुनौती केवल बढ़ती जनसंख्या ही नहीं है, बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली भी है। जी हाँ, पहले एक परिवार में एक साइकिल या एक मोटरसाइकिल होती थी, लेकिन आज एक ही घर में 5 सदस्य हैं तो 5 अलग अलग गाड़ियां हैं। छोटी दूरी पर भी लोग पैदल चलने के बजाय बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ती है, धुआं बढ़ता है और हवा भी प्रदूषित होती है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान का भी लगातार बढ़ता उपयोग बिजली की खपत और ई कचरे को बढ़ा रहा है। जितनी अधिक सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतना ही पर्यावरण पर दबाव भी पड़ रहा है। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरा भरा वातावरण देना है तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। जहां संभव हो पैदल चलें, साइकिल का उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं और अनावश्यक वाहन खरीदने से बचें। हर परिवार साल में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए और उसकी देखभाल भी करें। पानी और बिजली की बचत करें और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों का कर्तव्य भी है। अगर हर व्यक्ति छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाएगा तो हम पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण बना सकेंगे। ये मैसेज हमें मिला है गांव मीरामपुर बेगा से मोहम्मद कैफ, मोहम्मद साहब, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद उबैद और डॉक्टर विजय का, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर से। बिल्कुल सही कहा श्रोताओं आपने। जैसे कि अभी हमने कहा ही कि एक घर में जितनी गाड़ियाँ हैं उतनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल का ख़ास तौर पर बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि कचरा भी हो रहा है। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इन श्रोताओं ने हमें लिखकर भेजी है। तो श्रोताओं, प्लीज़ ख्याल रखें इस बात का जो हमारे इन श्रोताओं ने सलाह दी है, सुझाव दी है। और आपसे भी चाहते हैं कि हमारे दूसरे श्रोता इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9457078288 पर। आपके महत्वपूर्ण संदेशों का कार्यक्रम में हम इंतजार कर रहे हैं।

मुकेश की आवाज़ में आपने सुना फिल्म अनोखी रात का गीत। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव विषय पर। आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर, क्या सोचते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, सजोने के लिए आपने क्या किया है। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें 9457078288 पर, नंबर है हमारा 9457078288। इस नंबर पर आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। श्रोताओं, बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण और मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर हमने पर्यावरण को सुरक्षित करने की पहल नहीं की तो ये चिंता विकराल रूप भी ले सकती है। जी हाँ श्रोताओं, पर्यावरण की समस्या और बढ़ भी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए शुरुआत हमें ही करनी होगी। तो शुरुआत अपने घर से कीजिए। घर के बाहर गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं, पानी की एक एक बूंद की कीमत को समझें, बिजली का अनावश्यक प्रयोग बिल्कुल ना करें और साल में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल ज़रूर करें। श्रोताओं, पर्यावरण को बचाने के लिए किसी बड़े पद या ताकत की ज़रूरत नहीं, बल्कि बड़े इरादों की ज़रूरत होती है। और एक मैसेज कार्यक्रम में हम तक पहुँचा है शाही मार्केट स्योहारा जिला बिजनौर से। हमारे श्रोता हैं आसिफ चौधरी, लिखते हैं अपने आसपास का वनों का ध्यान रखें, एक पौधा अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाएं। अगर ये हमने ध्यान रखा तो हमारी ज़मीन बहुत खूबसूरत नज़र आएगी और बरसात का मौसम चल रहा है, कचरा ना फेंके, साफ सफाई रखें, कहीं पानी ना रुके, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारा देश बहुत सुंदर है, कोई सुंदर रखने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, यानी इसको सुंदर रखने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है हवा भी साफ सुथरी मिलेगी इससे और बीमारियां भी कम होंगी, ये इनका मानना है। बिल्कुल सही कहा आसिफ साहब आपने कि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और कचरे की जहाँ तक बात की है कि बारिश होती है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि बारिश हो रही है, पानी का तेज़ बहाव है तो कूड़े को यूं ही फेंक देते हैं और वो कूड़ा श्रोताओं नाली में जाकर फंस जाता है, जिससे पानी इकट्ठा हो जाता है। और आपको पता ही है कि जब पानी इकट्ठा होगा तो बहुत परेशानियां हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, उन्हीं पानी में मच्छर पनपेंगे और कई परेशानियां आपको सामना करना पड़ेगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम ज़रूर लगाएं, बिल्कुल श्रोताओं, पौधा माँ के नाम लगाने का के पीछे हमें लगता है कि कारण भी है कि हर व्यक्ति अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। तो जिस तरह से आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ठीक इसी तरह से आप पौधा भी लगाइए और उसको भी उतने ही लाड से पालिए, उसको सींचिए, जिस तरह से आप अपनों का ख्याल रखते हैं। सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में आपने सुना फिल्म सफ़र का गीत। आप सुन रहे कार्यक्रम जिंदगी लाइव, जो कि कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित है। और श्रोताओं, हमारा आज का जो कार्यक्रम में विषय है वो है अत्याधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव विषय पर। आपके मैसेजेस लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का अगला जो मैसेज है उसे शामिल करने से पहले ये संदेश सुन लीजिएगा।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। श्रोताओं, जिंदगी लाइव कार्यक्रम में लगातार हमारे श्रोताओं के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। एक और श्रोता का मैसेज मिला है, ये हमारे श्रोता हैं मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर का। लिखते हैं, जनसंख्या सीमित रखें, हम दो हमारे दो, सब पेड़ सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटना रोकें, प्रदूषण कम करें, पर्यावरण एक गाड़ी से सब लोग जाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए सब लोग एक गाड़ी से जाएं, अलग अलग वाहन से ज़्यादा ना जाएं। आपने अच्छा संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया है। श्रोताओं, कार्यक्रम में बार बार हम कह ही रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और देखिए, जनसंख्या वृद्धि को तो रोकना ही होगा, क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ यही है। जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी तरह से ज़रूरतें भी हमारी हो रही हैं। लोग ज़रूरतों के कारण शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ रही है और सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही है मकान बनाने के लिए, पेड़ों का कटान हो रहा है और बहुत सारी इसी तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो कि पर्यावरण को दूषित करने में बहुत आगे बढ़ रही हैं। और एक और श्रोता का मैसेज हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। ये हैं मिसबाह समशी नगीना से, लिखती हैं, बढ़ती आबादी का हमारी धरती और प्रकृति पर सीधा असर पड़ता है, जो कि एक चिंता का विषय है। जब संसाधन सीमित हों और इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा, तो प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता ही है। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए पानी, पेड़ पौधे और शुद्ध हवा को बचाने की सख्त ज़रूरत है। एक जिम्मेदारी नागरिक के तौर पर हम सबको मिलकर पर्यावरण का संरक्षण में अपना योगदान देना ही होगा। जी हाँ श्रोताओं, पर्यावरण को संरक्षित करने की किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। और अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और सुरक्षित जीवन देना है, तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना ही होगा। लगातार कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं के मैसेजेस मिल रहे हैं। हम अन्य श्रोताओं से भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण विचार है, सुझाव है, तो आप कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस करके। और मैसेज करने के लिए नंबर है वही 9457078288। आपके महत्वपूर्ण संदेशों का कार्यक्रम में स्वागत रहेगा।

किशोर कुमार का गाया गीत आपने सुना, फिल्म थी दूर गगन की छांव में। श्रोताओं, एक पौधा लगाने में हमें 5 मिनट लगते हैं, है ना, लेकिन वही पौधा वर्षों तक हमें ऑक्सीजन, छाया और साफ वातावरण देता है। लेकिन श्रोताओं, कई बार हम क्या करते हैं कि पौधा तो लगा देते हैं, उसकी देखभाल उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से करनी चाहिए। पौधे लगाकर अक्सर हम भूल जाते हैं। सोचिए श्रोताओं, अगर हम हर लगाया हुआ जो पौधा है पेड़ बन जाएगा, तो हमारे शहर और गांव की तस्वीर कैसी होगी, कल्पना कीजिए। तो एक पौधा आप ज़रूर लगाएं। और इसी बीच हम तक पहुंच गया है कार्यक्रम में एक और मैसेज लिखने वाले हमारे श्रोता हैं, नगीना से अनिल विनोचा लिखते हैं, आज का जो टॉपिक है जनसंख्या पर आधारित है, पर्यावरण पर आधारित है, तो लिख रहा हूँ कुछ हमेशा की तरह वही इनका जाना पहचाना अंदाज़। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज हमें मिला है। लिखते हैं, ज़्यादा जनसंख्या से पर्यावरण पर असर, मतलब ज़्यादा साधनों के इस्तेमाल से होता है। जब ज़्यादा आधुनिक भौतिक सुविधाएं होंगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का साधन यूज़ करना, जिससे धुआं बढ़ता है जो कि सीधा असर करता है। ज़्यादा आवाज़ चाहिए, रोज़गार चाहिए, पलायन इसकी वजह से बढ़ रहा है और लोग 20-20 मंजिल पर रह रहे हैं। 24 घंटे लाइट चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, जिससे पर्यावरण पर असर बढ़ता ही है। वायु भी दूषित होती है, हमें इसके लिए नेचर के साधनों में से जुड़ जाना चाहिए। दूसरा साधन का उपयोग कम करें, संसाधनों का उपयोग कम करें, जिससे बहुत असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है श्रोताओं। आगे ये लिखते हैं कि एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा पिता के नाम, एक पौधा बच्चों के नाम, तब ये मुहिम पूरी तरह से सफल होगी। बिल्कुल श्रोताओं, अगर हम सभी परिवार के सदस्य एक एक पौधा लगाएंगे, एक दूसरे को समर्पित होकर लगाएंगे, एक दूसरे के लिए लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात आज कार्यक्रम में हम कर रहे हैं वो पूरी हो पाएगी। और जैसे कि इन्होंने लिखा कि बच्चों के नाम लगाएं, तो हम तो ये कहेंगे कि अपने बच्चों के साथ मिलकर आप पौधे लगाएं, जिससे कि बच्चों को भी इसका महत्व पता चलेगा। वो आपसे ज़रूर जानेंगे कि ये पौधा आप क्यों लगा रहे हैं, और तब आप उन्हें बताएंगे कि इस पौधे का क्या फ़ायदा उनको आगे जाकर मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए। मैसेज काफ़ी बड़ा आपने लिखा है, और हमेशा अनिल विनोचा जी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता करते रहते हैं। हम अन्य श्रोताओं से भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अगर आप भी हम तक अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं, कोई सुझाव आप कार्यक्रम में हमें देना चाहते हैं, तो आप हमें संदेश भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर 9457078888 पर। और अपने श्रोताओं से भी हम जानना चाहेंगे कि अगर इस बरसात में उन्होंने कोई पौधा लगाया है, तो वो कौन सा पौधा लगाया है। अगर आपने लगाया है तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप कीजिएगा हमें, आपके संदेश का हम इंतज़ार कर रहे हैं।

चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आपने सुना फिल्म रोजा का गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं समय कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अत्यधिक जनसंख्या से पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ने वाले दबाव विषय पर। और चाहते हैं आपसे कि आप इस विषय पर क्या सुझाव हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं, आपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया है। आप हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं 9457078288 पर। अभी थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है श्रोताओं, प्रकृति से जितना लें उतना लौटाने की भी कोशिश करें। पानी बचाएं, बिजली बचाएं और अपने आसपास सफाई रखें। एक श्रोता का मैसेज शामिल कर लेते हैं। ये मैसेज आया है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़से और विनोद खड़से का। लिखते हैं, हम हर बारिश के मौसम में कोई ना कोई पौधा अवश्य लगाते हैं, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा हमारा दायित्व है। इस बार हमने जामुन और पीपल का पौधा लगाया है। बहुत सुंदर आपने कार्य किया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। हमारे बहुत सारे श्रोता इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं। हम आपसे फिर से कहेंगे कि एक पौधा ज़रूर लगाएं, और अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो हमारे साथ साझा करें। और हमारे श्रोताओं ने जो ये पौधा लगाया है, यवतमाल के जो हमारे श्रोता हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से, आपने लगाया है जामुन और पीपल का पौधा। दोनों ही बहुत फलदायी पौधे होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद पौधे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना मैसेज, अपने विचार हम तक पहुँचाए। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ में।

हमारे एक और श्रोता का मैसेज आ गया है, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, मैसेज पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन शामिल कर लेते हैं आपके मैसेज को। आप हैं कासिम पेंटर, ग्राम मंडावली से लिखते हैं, आइए हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, पानी की हर बूंद बचाएं, अनावश्यक वाहन का उपयोग कम करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरा भरा भारत छोड़कर जाएं। तो बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में, क्योंकि मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हमने शामिल करने की कोशिश की। अगर किसी श्रोता का मैसेज कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया हो तो नाराज़ ना हो, जल्द ही अगले कार्यक्रम में आप सभी को शामिल किया जाएगा। और श्रोताओं, चलते चलते आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आज के ज़िंदगी लाइव कार्यक्रम में हमने बहुत सारी बातें पर्यावरण से की। आज हमने जाना कि बढ़ती जनसंख्या के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना श्रोताओं केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। पानी बचाना, पेड़ लगाना, स्वच्छता अपनाना और सुविधाओं का सोच समझकर उपयोग करना, यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और अब कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, रेणु कोटनाला को नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: डिसीशन टू एलिवेट
3: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
5: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi arrives at Spark Arena in Auckland to address the Indian community. Around 10,000 people have already gathered at the venue. Members of the Indian diaspora from across New Zealand have come together for this special event. Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary E. Sridharendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide joint action over the next 4 years. He added that this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam today.
5: Multi-function radar ke saath.
6: It has a long-range surface-to-air missile combination with a multifunction radar that can detect and destroy any threat coming from the sky from a distance. And it has an indigenous rocket launcher, torpedo launchers, an integrated anti-submarine defense system, an electronic warfare suit, and a close-in weapon system too. These all things make INS Mahendragiri as invincible and strong as the Mahendragiri mountain.
5: Mahendragiri parvat ke saman hi abhed aur majboot banati hai.
0: Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jayaprakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jayaprakash Narayan was a great freedom fighter, thinker and national leader who made remarkable contributions to the country. Highlighting the role of libraries in nation building, the Home Minister said they are a powerful medium for spreading country's culture and knowledge among the masses along with modern education. Union Road Transport Minister Nitin Gadkari chaired the third BRICS Transport Ministers meeting today in Nagpur, Maharashtra. While interacting with media, Mr. Gadkari said that delegates discussed the efforts to make the carbon neutral transport in road, rail, aviation and waterways transport by adopting the alternative biofuels and pollution-free technologies. BRICS Ministerial Declaration 2026 has also been adopted during the meeting for strengthening this cooperation among BRICS countries. Niti Aayog has convened a stakeholder consultation on implementation of the Shanti Act 2025 in New Delhi with focus on developing legislative and regulatory framework, strengthening finance, insurance and public perception. The consultation brought together key leaders, policymakers and experts from the government, research institutions and industry to deliberate on the operational framework of the Landmark Act. The India Meteorological Department has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 3 days. In United States, the Trump administration imposed a fresh round of sanctions on Iran today, targeting individuals and financial networks linked to the country's leadership. This comes in response to Tehran's attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz earlier this week. The latest measures mark another escalation in Washington's campaign against Iran following a series of retaliatory steps that have included U.S. strikes on Iranian targets and the withdrawal of a sanctioned waiver that had allowed Tehran to sell oil. In the FIFA World Cup, Norway will take on England while defending champions Argentina face Switzerland late in the night in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. Spain secured a thrilling 2-1 victory over Belgium
1: to advance while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. India will face host England in the fifth and final T20 international of the series today in Southampton at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. And that is the end of this news bulletin.
7: कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में अवामी दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने टेकुतार में मुनक्किद तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब में तीन असेंबली हलकों रामकोला, हाटा और कुशीनगर के लिए सड़क, तालीम, सेहत और आबपाशी से मुतालिक 525 करोड़ रुपए के 464 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर आला ने जलसा आम से खिताब भी किया। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
8: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
7: आज ही वजीर आला गोरखपुर के पिपराइच असेंबली हलके के इंद्र भाथड़ बंस्थान में 758 करोड़ रुपए के 24 तरक्याती कामों की नकाब कुशाई करेंगे। वो 697 करोड़ 49 हजार रुपए की लागत वाली भाट भंस्थान 4 लेन वाली सड़क समेत 5 सड़कों का इफ्तिताह भी करेंगे और 60 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से सड़क की तामीर और सयाहत से मुतालिक 19 तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पीर को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी की गैर जानबदाराना तहकीकात का मतालबा करने वाली कई अर्जियों पर समाअत करेगी। दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच के सामने होगी। इन दरख्वास्तों में इस वाकये की सीबीआई तहकीकात और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माली लेन देन का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑडिट का मतालबा किया गया है। कबल अज अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 मुलजिमान में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्रा राम मंदिर की तामीर कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए आज अयोध्या में हैं। राम मंदिर में पेशकश की चोरी के बारे में उन्होंने कहा कि खजांची गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि यह अपने आप में एक बदनुमा दाग है और हम सब खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब इंतजाम बेहतर होंगे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की गिनती करने वाले 20 से जायद मुलाजमीन ने बैंक वक्त इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों को अतियात में बेजाब्तगियों के सामने आने के बाद निजाम में की गई तब्दीलियों से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान बाकी मुलाजमीन की ड्यूटी शेड्यूल और छुट्टियों में रद्दोबदल कर दिया गया है। अतियात की गिनती के लिए हिफाजती इंतजाम भी सख्त किए जा रहे हैं। इस काम के लिए अब खसूसी अमले की खिदमत हासिल की जाएगी। माहौलियात के तहफ्फुज के लिए रियासती हुकूमत कल शजरकारी महायज्ञ 2026 का इनेकाद करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के करीब एक पौधा लगाकर तकरीब का आगाज करेंगे। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में पौधा लगाएंगे और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधा लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत रियासती हुकूमत ने 35 करोड़ पौधे लगाने का हदफ रखा है। मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने की मुहिम के तौर पर रियासत भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर मौसमी बीमारियों और दीगर बीमारियों की अलामत और उनसे बचाव के बारे में आगाही फराहम करेंगी। आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को आबादी में इजाफे से मुंसलिक चैलेंजेसों और मवाक़े के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद आबादी से मुतालिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों की हौसला अफजाई करना है। इस साल आबादी के आलमी दिन का थीम है आज और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों का इदराक। ریاست کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کی وجہ سے جانوں اور مویشیوں کے نقصان کے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے احکام دیے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر نقصان کا اندازہ لگانے اور معاوضہ فراہم کرنے کی ہدایت ہے. وزیر اعلی نے تمام اعلی حکام کو علاقے کا دورہ کرنے اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. مانسون کی بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی اضلاع میں ندیوں کی سطح بڑھنے لگی ہے. ایک رپورٹ.
9: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है. वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है. उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गयी है. अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं. समाचार कक्ष से تنویر
7: فاطمہ. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
10: ہم آکاشوانی لکھنؤ سے بول رہے ہیں. دن کے 1:15 ہوئے ہیں. اب مہیلائیں سنیں اپنا کاریکرم گھر آنگن.

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: बंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
1: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन

0: सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरि को महेंद्रगिरि पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक ही गीतकार। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही गीतकार। आज कार्यक्रम में बात एक ऐसे गीतकार की जिनकी लेखनी में सादगी थी, संवेदनशीलता थी और दिल की सच्ची भावनाएं थी। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने अपने गीतों में प्यार, बिछड़न, उम्मीद और जिंदगी के छोटे छोटे एहसासों को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं गीतकार असद भोपाली की। कार्यक्रम में उनके बारे में जानेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं आपको उन्हीं का लिखा फिल्म सलाम मेम साहब का गीत। आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है, शब्द रचना असद भोपाली की और संगीत रफी का।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: एक ही गीतकार क्रम में श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं गीतकार असद भोपाली की। श्रोताओं असद भोपाली का जन्म 20 जुलाई 1921 को भोपाल में हुआ। उनका असली नाम असदुल्ला खां था। बचपन से ही उन्हें उर्दू शायरी और कविता का शौक था। स्कूल के दिनों से ही वे छोटी छोटी नज़में और गज़लें लिखने लगे थे। उनके शब्दों में सादगी थी, उनकी शायरी में बनावटीपन नहीं था बल्कि आम इंसान के दिल की सच्ची भावनाएं थी। यही सादगी आगे चलकर उनके गीतों की भी सबसे बड़ी पहचान बनी।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, भोपाल के एक मुशायरे में असद भोपाली ने फिल्म जगत के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्हें मुंबई आने का अवसर मिला और यहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत भी हुई। शुरुआती दिनों में संघर्ष रहा, लेकिन उनकी प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें पहचान दिला दी। जी हां, संगीतकारों और निर्माताओं को उनकी सरल भाषा और भावपूर्ण लेखन बहुत पसंद आया और धीरे धीरे वे हिंदी सिनेमा के भरोसेमंद गीतकारों में जाने जाने लगे। अब कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज़ में फिल्म बादल का गीत, जिसे लिखा है असद भोपाली ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

0: श्रोताओं, असद भोपाली की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कठिन भावनाओं को भी बहुत ही सरल शब्दों में व्यक्त कर देते थे। प्रेम हो, इंतजार हो, मिलन हो या फिर बिछड़ने का दर्द, हर एहसास उनकी कलम से सहज रूप से निकलता था। उनके गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही दिल की बात कह रहा हो। शायद यही वजह है कि उनके लिखे गीत आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने अपने समय में लगते थे। लीजिए सुनिए उन्हीं का लिखा गीत फिल्म पारसमणि से, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है।
1: वो जब याद आए

मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है एक ही गीतकार, और एक ही गीतकार क्रम में श्रोताओं हमारे आज के फनकार हैं गीतकार असद भोपाली। श्रोताओं, असद भोपाली एक अच्छे गीतकार के तो थे ही, वो हर संगीतकार की धुन के अनुरूप शब्द रच सकते थे। असद भोपाली इस कला में निपुण थे। उन्होंने एस एन त्रिपाठी, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बाद में राम लक्ष्मण जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। उनकी लेखनी में ऐसी सहजता थी, श्रोताओं की धुन और शब्द एक दूसरे का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते थे, और यही कारण है कि उनके कई गीत आज भी श्रोताओं की पहली पसंद बने हुए हैं। लीजिए सुनिए आप भी लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म टावर हाउस का गीत, और इसको लिखा है असद भोपाली ने।

श्रोताओं, असद भोपाली ने कभी कठिन शब्दों का सहारा नहीं लिया। उनका विश्वास था कि गीत वही है जो सीधे दिल तक पहुंचे। उन्होंने रोमांटिक गीत लिखे, दर्द भरे नगमे लिखे और चंचल गीत भी लिखे, और यही कारण है कि उनकी रचनाएं हर उम्र के श्रोताओं को अपनी सी लगती है। उनकी लेखनी का अपनापन आज भी उनके गीतों को जिंदा रखे हुए है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, हम सब उस्ताद हैं, फिल्म से आवाज़ किशोर कुमार की।

श्रोताओं, समय के साथ फिल्म संगीत बदल गया, लेकिन असद भोपाली साहब की लेखनी की मिठास कभी कम नहीं हुई। लगभग 4 दशक तक सक्रिय रहने के बाद भी उन्होंने नई पीढ़ी के लिए ऐसे गीत लिखे जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। फिल्म मैंने प्यार किया का गीत दिल दीवाना बिन सजना के माने ना उनकी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है, और इसी गीत के लिए उन्हें 1990 का फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए मिला। ये सम्मान उनके लंबे और समर्पित रचनात्मक सफर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म मैंने प्यार किया से, आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम की।

श्रोताओं, फिल्मफेयर पुरस्कार मिलने के कुछ समय बाद वर्ष 1990 में असद भोपाली इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। लेकिन श्रोताओं, किसी कलाकार की असली पहचान उसके बाद भी उसके काम का जीवित रहना होता है। उनके लिखे गीत आज भी उनकी याद हमें दिला जाते हैं। और अब इस उम्मीद के साथ कि एक ही गीतकार कार्यक्रम आज का आपको पसंद आया होगा, जल्दी होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रेणु कोटनाला को, नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही गीतकार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी द्वितीय प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने वाली दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं की। पहली है राष्ट्रीय आयुष मिशन और दूसरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। श्रोताओं, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके स्वस्थ नागरिक ही होते हैं। देश तभी विकसित माना जा सकता है जब हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मिले, समय पर उपचार मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं निशुल्क हासिल हों। ऐसे में ये दोनों ही स्वास्थ्य योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो आइए पहले आपको बताते हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में। श्रोताओं, हमारा देश सदियों से आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी और कई अन्य तरह की देसी चिकित्सा पद्धतियों का केंद्र रहा है। इन्हीं चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए और आम जनता तक इनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य है लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराना। इस मिशन को सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आयुष मिशन योग और प्राकृतिक चिकित्सा, टेलीमेडिसिन, सूचना, शिक्षा तथा संचार से जुड़े क्रियाकलाप, साथ ही साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचारों को बढ़ावा देता है। इस मिशन के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए संचारी और गैर संचारी रोगों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही बेहतर सुविधाओं से व्यवस्थित अनेकों आयुष शिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयुष शिक्षा में सुधार करना भी इस मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। तो यदि हम आसान और सीमित शब्दों में समझें तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक और अन्य सभी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का विकास करने हेतु शुरू किया गया है, ताकि देश के लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। अब बात आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। इस योजना को हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं और ये देश भर में काफी लोकप्रिय है। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि मरीज को इलाज के समय अस्पताल में पैसे जमा करने की चिंता नहीं होती। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना में ऐसे सभी भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। साथ ही समस्त दिव्यांग व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये योजना संपूर्ण भारत में साल 2018 में लॉन्च की गई थी। श्रोताओं, इस योजना के माध्यम से हृदय रोग, कैंसर, किडनी रोगों जैसी समस्त बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है। तो जो लोग

इस योजना के लिए पात्र हैं वो आयुष्मान कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, स्वस्थ भारत और उन्नत भारत के निर्माण में हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं हमें बुनियादी रूप से मजबूत करती हैं। पैसे के अभाव में किसी गरीब की जान न जाए, बस यही इनका उद्देश्य है। आइए कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में अब सुनते हैं ये प्रेरणादायक गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनवाया जाएगा आज रात 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर में शाम 5:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज क्रम होगा गीत आपके नाम। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। इस कार्यक्रम में आज किसान भाइयों से चर्चा का विषय होगा अत्यधिक जनसंख्या से उत्पन्न होता खाद्यान्न संकट। साथ ही कार्यक्रम में आज क्रम रहेगा लोकगीतों और रागनियों के फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी का।

विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज वार्ताकार श्री राजेंद्र शर्मा की वार्ता पेश की जाएगी, जिसका शीर्षक होगा लोक कला पंडवानी की प्रवर्तक तीजनबाई। ये कार्यक्रम शाम 6:45 पर प्रसारित होगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज शाम 7:32 पर आप सुनेंगे कलाकार वंशिका सोती के गाए भजन।

श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के विषय में। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:31 पर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रसारित होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के बारे में। दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। फिल्मी संडे कार्यक्रम प्रसारित होगा 12:30 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे फिल्म जो जीता वो ही सिकंदर की कहानी।

कल रात 9:30 पर कार्यक्रम सुनिएगा नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर। रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का प्रसारण किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। शाम 7:50 पर कार्यक्रम अदबी दुनिया पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कल कलाम-ए-शायर पेश करेंगे संतोष कुमार।

कल शाम 6:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा बरसात में साफ सफाई का महत्व। साथ ही बातें होंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता भी कल किसानों को सुनवाई जाएगी जिसका विषय होगा मत्स्य पालन तकनीक से लाभ। इस विषय पर श्री अनूप कुमार सिंह से बातचीत करेंगे जितेंद्र कुमार। बच्चों का लोकप्रिय कार्यक्रम बाल वाटिका प्रसारित होगा कल दोपहर 1:15 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत नन्हे हस्ताक्षर क्रम में आप सुनेंगे वरण्या से नंदिनी माहेश्वरी की बातचीत। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 meters यानी 954 kilohertz पर। शाम के 5:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो हेलो हेलो दोस्तों, विश अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। और आज की शाम आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अक्षी त्यागी।
1: दोस्तों, अक्षी के साथ प्रोग्राम में बनी रहूंगी मैं, आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी।
0: जी हाँ दोस्तों, मौसम देखा है आपने, कितना दिलचस्प है ना? होगा भी क्यों नहीं, सुबह तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी, तो शाम होते होते काले बादल और झमाझम बारिश। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हर दिन नया रंग दिखा रही हो।
1: अक्षी, जिस तरह मौसम अपना रंग बिरंगा रंग दिखा रहा है, क्यों ना आज का प्रोग्राम भी उसी तरीके से हो जाए हमारा।
0: जी हाँ दोस्तों, एक तरफ गर्मी हमें खूब पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और तेज धूप से बचने की याद दिलाती है, तो दूसरी तरफ बारिश अपने साथ ठंडी ठंडी हवा लेकर आती है और मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू और सुकून लेकर आती है।
1: अक्षी, मौसम की तरह ही हम भी महफिल जमाने वाले हैं आज यहाँ, जहाँ बातें होती हैं दिल की, यादें होती हैं अपनों की, और हर गीत जुड़ जाता है किसी खास इंसान के नाम से। कभी दोस्ती की मुस्कान, कभी प्यार की धड़कन, कभी माँ की ममता, तो कभी किसी की मीठी याद। हर एहसास के लिए यहाँ एक अनोखा गीत है।
0: लेकिन मौसम के इस बदलते मिजाज में थोड़ी सावधानी दोस्तों बहुत जरूरी है। गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखें और बारिश में भीगने के बाद जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लें, यानी सूखे कपड़े पहन लें, और बाहर का कोई भी कटा फटा या खुला खाना खाने से बचें, क्योंकि ऐसे मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और तो और, मौसम को एंजॉय कीजिए।
1: आज की शाम को हम भी बनाते हैं और खूबसूरत आज का ये पहला गीत आज के मौसम के नाम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: ए सुन, चलती क्या?
5: हाँ सुना, कहाँ लेकर जाएगा?
4: तुम जहाँ कहो।
5: ओके, फिर तो शॉपिंग करने चलो।
4: कसम से दीदी, आपके साथ तो मजाक करना भी ना गुनाह है।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
6: तो दोस्तों, गीत आपके नाम में आपने सुना, ये पहला गीत। तो अब उसके बाद हम लेते हैं टर्न अपने नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास से आज के पिटारे की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में।
7: जी हाँ दोस्तों, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य न केवल बढ़ती आबादी की बात करना, बल्कि ये समझना भी है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधनों पर कितना प्रभाव पड़ता है।
6: जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, लेकिन ये ताकत तभी देश की प्रगति का आधार बन सकती है जब हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आगे बढ़ने के समान अवसर मिले।
7: बढ़ती जनसंख्या के साथ हमें पानी बचाने, पेड़ लगाने, बिजली का सोच समझकर उपयोग करने और पर्यावरण की रक्षा करने जैसी छोटी छोटी आदतों को भी अपनाना होगा, क्योंकि आज की हमारी जिम्मेदारी से बात करना हमें बेहद जरूरी है।
6: जी हाँ, इस विश्व जनसंख्या दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, संसाधनों का सम्मान करेंगे और एक स्वस्थ, शिक्षित तथा जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
7: ये तो हम करेंगे ही दोस्तों, लेकिन हमारा फर्ज है साथ साथ में आपको एंटरटेन करना। और आज है सैटरडे, और आपको पता ही है आज सैटरडे के दिन जाता है सेगमेंट गीत आपके नाम, जिस पर आपको करने होते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर मैसेजेस। और तो आप करते हैं

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें।

0: ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे आशा कर लोट कोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
3: ओए लड़के, तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ोगे?
5: नहीं छोड़ूंगा।
3: तो मतलब तुम उससे शादी करके ही मानोगे?
5: जी हाँ अंकल, शादी करके ही रहूंगा।
3: देखो मैं तुमसे बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी पूरी जिंदगी किसी मूर्ख इंसान के साथ काटे।
5: अरे अंकल बस बस बस बस, इसलिए तो मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ।
4: जी हाँ मजा आ गया।
6: जी हाँ दोस्तों, मजा तो हम लोगों को भी आ गया, क्योंकि हमारे साथ गीत आपके नाम में जुड़ चुके हैं काफी सारे हमारे लिसनर्स। तो जिसमें हम शामिल करने वाले हैं हमारे जो पहले लिसनर हैं, उनका नाम है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आरके राजा, जो कि हैं लाल कुर्ती रुड़की कैंट से।
3: तो दोस्तों आप भी हमें भेज सकते हैं मैसेज, क्योंकि अभी देर नहीं हुई है, आपको हम सुनवाएंगे आपकी पसंद का सॉन्ग। तब तक चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्क्रैप बुक की ओर। हर पल तस्वीर नहीं बनता, हर एहसास शब्द नहीं ढूंढ पाता, लेकिन जिंदगी की स्क्रैप बुक में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो पलटते ही हंसा भी देते हैं और सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी और आप सुन रहे हैं हमारा फेवरेट सेगमेंट स्क्रैप बुक, जहां सवाल छोटे होते हैं पर जवाब जो हैं दिल से निकलते हैं। हर लाइन में छुपी होती है थोड़ी मस्ती और थोड़ी सी सच्चाई। तो चलिए बिना ज्यादा प्लान किए आज का पन्ना खोलते हैं और मिलते हैं हमारे आज की मेहमान से। तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
7: मेरा नाम अनुराधा है और मैं नजीबाबाद के मोहल्ला जापतागंज की एक निवासी हूँ।
3: तो अनुराधा जी, सबसे पहले आप ही बताइए, आपको हमारे स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है?
7: बहुत अच्छा लग रहा है, सलोनी से बातचीत

0: रही हैं, तो आप ये बताइए आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई है और आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया?
1: तो मैंने अपनी पढ़ाई नजीबाबाद के एमडी केवी इंटर कॉलेज से की है। नर्सरी से लेके 12th तक मैंने अपना वहीं से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बिजनौर के आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है, जो कि बीटेक की थी। उसके बाद पहली जॉब स्टार्ट की 2020 में टीसीएस के साथ, और उससे पहले भी मैंने 5 महीने एक जॉब की थी जो कि मेरी एनआईसी में थी, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर।
0: तो आपकी जॉब फिलहाल कैसी चल रही है?
1: बहुत अच्छी चल रही है। एक अपने कैरियर के एक नए पड़ाव पे हूँ मैं अभी। 5 साल मेरे हो जाएंगे अप्रैल में मैं जॉब करते करते, इतना एक्सपीरियंस है 5 साल का मुझे। अब उसके साथ मैं एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पे आई हूँ।
0: तो अनुराधा, वापस लौटते हैं हमारे सेगमेंट स्क्रैप बुक के लिए, जिसके लिए आज हम आए हैं। अनुराधा, सच सच बताओ, आज स्टूडियो में आते वक्त दिमाग में क्या चल रहा था आपका? नर्वस थी आप?
1: मैं अभी भी बहुत नर्वस हूँ। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या पूछने वाली हो, और जैसा कि आपने बताया था कुछ पहेलियां होंगी, कुछ फन सेगमेंट होगा, तो वही है। मुझे नहीं पता मैं कितनी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊंगी, लेकिन हाँ देखते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है जिसको लेके और मजा आने वाला है।
0: तो मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा, बल्कि आपके दिल की बातों को सुना जाएगा। तो आज स्क्रैप बुक का एक नया पन्ना खोलते हैं और थोड़े से नोट्स बनाते हैं उसके, थोड़ा ईमानदारी के साथ। तो अनुराधा, हमारे सेगमेंट में रहेंगे कुल 3 राउंड, जिसमें आपके दिल की बातें सुनी जाएंगी, लिसनर्स तक पहुंचेंगी और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। तो क्या हम शुरू करें?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अनुराधा, दिल से बताओ, सुबह उठते ही सबसे पहले ख्याल क्या आता है?
1: आज कितनी मीटिंग्स होगी, पता नहीं क्या होगा, आज मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा, यार वो काम भी करना है, ये भी करना है, घर के भी कुछ काम करने हैं।
0: कभी किसी बात को ठीक है कहकर दिल में रखकर टाल दिया है?
1: ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं इसमें विश्वास रखती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो हर एक चीज के पीछे, होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर अपनी मर्जी का नहीं हो रहा है तो कहते हैं कि भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं, अगर हमारी मर्जी का नहीं हो रहा है तो वो जो हमें चाहिए उससे बेहतर सोच के रखते हैं।
0: बिल्कुल अनुराधा, सच सच बताओ अनुराधा, आज तक सबसे ज्यादा बार बोले जाने वाला झूठ कौन सा रहा है आपका?
1: मैं ठीक हूँ।
0: बिल्कुल, ये
1: क्योंकि वही कि हम हर किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते, और क्योंकि हम यहाँ पे अपने दिल की बात डिस्कस कर रहे हैं तो ये एक सबसे बड़ा झूठ है, और केवल मेरे लिए नहीं है, सभी लोग यही झूठ सबसे ज्यादा बोलते हैं।
0: बिल्कुल अनुराधा, सच सच बताओ, कभी खुद से कहा है अब तो बदलना पड़ेगा और फिर कुछ नहीं बदला है?
1: हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, कि मैं पिछले 2 साल से अपनी जॉब में स्विच करने के लिए प्लान कर रही थी। हर साल ये सोचती थी नए साल वाले दिन के इस साल पूरे मन से मेहनत करूंगी, और फिर वो पूरे साल ऐसे ही चला जाता था, और आखिरी आखिरी दिन साल के ये सोचती थी यार क्या पहले दिन सोचा था और आज वहीं के वहीं है। तो बट लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल हम एक नई पड़ाव पे हैं अपने कैरियर ग्रोथ के, तो हाँ
0: नए प्लान्स के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहेंगे आप।
1: बिल्कुल।
0: फिर तो एक सच और बता ही दीजिए आप अनुराधा
1: जी,
0: कभी किसी को मिस किया है लेकिन कॉल नहीं कर पाई हो, या करना चाहती थी ऐसे कुछ कंडीशन आए कि आप कर नहीं पाई?
1: मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मिस अपने पापा को करती हूँ, और क्योंकि वो बहुत दूर है, उनको तो कॉल भी नहीं कर सकते, तो ये है। और इसके अलावा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे अभी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ वो बहुत खास रहे हैं मेरे, लेकिन अभी उनसे बात नहीं होती है कुछ कारणों के कारण।
0: सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग आपको रात में होती है या दिन में? सच सच बताना, क्योंकि राउंड का नाम ही है, सच बताओ दिल से।
1: बिल्कुल, ओवरथिंकिंग ऑब्वियसली रात में ही ज्यादा होती है।
0: तो अनुराधा, इसी के साथ हमारा पहला राउंड फिनिश होता है, आप ही बताइए कैसा लगा आपको हमारे पहले राउंड के बाद?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अब आप नर्वस हैं या आगे के राउंड के लिए और एक्साइटेड हैं?
1: हाँ थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, बट बहुत थोड़ी सी नर्वस भी।
0: चलते हैं हमारे अगले राउंड की ओर, जो होगा दिस और दैट। तो 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम उसमें नहीं लेना है। शुरू करें?
1: बिल्कुल।
0: चाय या कॉफी?
1: चाय।
0: चैट्स पर बात करना या कॉल पर बात करना?
1: कॉल पर बात करना।
0: कम शब्द में बात करना या गहरी बात करना?
1: कभी कभी कम शब्द में बात करना, लेकिन कभी कभी गहरी बात करना।
0: यादें संभाल कर रखना या उन्हें भूल जाना?
1: यादें संभाल कर रखना।
0: खुद से प्यार या दूसरों से उम्मीद?
1: खुद से प्यार।
0: कैट्स पसंद है या डॉग?
1: डॉग।
0: पिज्जा या बर्गर?
1: पिज्जा।
0: अकेले घूमना या फ्रेंड्स के साथ घूमना?
1: अकेले घूमना।
0: मूवी देखना या बुक पढ़ना?
1: मुझे बुक पढ़ना पसंद है, और अभी तक एक्चुअली मुझे स्टोरीज वाली बुक पढ़ना पसंद है, मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बुक अभी पढ़ रही हूँ।
0: तो अनुराधा, आप सोशल मीडिया पर भी होंगी?

0: जी जी
1: तो अगले क्वेश्चन सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछ लिया जाए।
0: बिल्कुल।
1: इंस्टा स्टोरी या इंस्टा पोस्ट,
0: स्टोरी,
1: यूट्यूब या फेसबुक,
0: यूट्यूब,
1: व्हाट्सएप या टेलीग्राम,
0: व्हाट्सएप।
1: ओके, हमने आपकी पसंद की चीजें पूछ ली हैं, तो फेवरेट सवाल से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है?
0: फेवरेट सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग है कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
1: देखते हैं लिसनर्स कितना प्यार देते हैं आपके इस फेवरेट सॉन्ग को। सबसे पहले सुन लेते हैं आपका ये फेवरेट सॉन्ग, फिर चलते हैं हमारे राउंड थ्री की ओर। तो अनुराधा, चलते हैं हमारे राउंड थ्री की ओर। जो मैं आपको बता दूं कि उसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ पहेलियां, उसमें आपको दिल की नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक के जो हमारे राउंड्स थे उसमें आप अपने दिल की सुन रही थी और हमारे लिसनर्स को भी सुना रही थी। तो क्या अब आप थोड़ा दिमागी रूप से हमारे सेगमेंट को खेलने के लिए तैयार हैं?
0: बिल्कुल।
1: हम आपको बता दें, इसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ रिडल्स जिनके आपको जवाब देने हैं। अगर आप सही जवाब देती हैं तो आपको मिलेंगे प्लस पॉइंट, और अगर आप जवाब गलत देती हैं तो आपको स्टेप मार्किंग के तौर पर हम कुछ नंबर्स दे देंगे। तो क्या आप रेडी हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे पहली पहेली आपकी, बिना पंख उड़ती हूँ, बिना आंख देखती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ?
0: पतंग।
1: हो सकता है पतंग भी इसका आंसर, लेकिन जो हमारी पहेली है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है हवा।
0: ओके।
1: वैसे इसका 50-50% आंसर ठीक है, हम आपको नंबर देंगे इसके।
0: थैंक यू,
1: आपने सही जवाब दिया है। अगला हमारा रहेगी अगली पहेली, जितना ज्यादा सुखाओ उतना ही गीला हो जाऊं मैं, बताओ कौन हूँ?
0: तौलिया।
1: बिल्कुल सही गैस किया है आपने। ना मुंह ना आंख फिर भी सब कुछ बताओ, कभी सच कभी झूठ, बताओ मैं कौन हूँ?
0: न्यूज़पेपर।
1: बिल्कुल, आपके जवाबों से ऐसा लग रहा है कि आप रेडी होकर आई थी घर से और बोल रही थी मैं नर्वस हूँ।
0: पहला एक्सपीरियंस ना।
1: खुद बोल नहीं सकता पर सबकी बात सुनाता हूँ, दूर बैठे को पास बुलाऊं, दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? सोचो आप कहाँ हो
0: आज तो मैं आकाशवाणी में हूँ, आकाशवाणी नजीबाबाद में हूँ, तो क्या इसका उत्तर रेडियो है?
1: बिल्कुल सही, यही तो होते हैं दिल से दिल के कनेक्शन, जहाँ पर हम बिना देखे कनेक्ट होते हैं और अपने दिल की सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। एक ही जगह रहता हूँ फिर भी हर जगह घूमता हूँ, सबके दिल की खबर मैं रखता हूँ। और मैं बता दूँ, इसके बिना आजकल किसी का काम चलता ही नहीं है।
0: स्मार्टफोन।
1: बिल्कुल सही जवाब दिया आपने अनुराधा,
0: थैंक यू।
1: अगली पहेली रहेगी हमारी, जो सिर्फ ऊपर जाती है नीचे कभी नहीं आती, बताओ कौन हूँ मैं?
0: हमारी उम्र।
1: बिल्कुल सही, इसका तो मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं थी कि आप आंसर दे पाएंगी। तो इसका मतलब आप पहेलियां सुनती और सुनाती हैं, मतलब माइंड में रखती हैं चीजों को।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो अगली पहेली की ओर चला जाए।
0: बिल्कुल।
1: मेरे बिना सब अधूरा, मैं साथ सब पूरा, नाम छोटा सा है मेरा पर काम बड़ा है मेरा।
0: समय।
1: बिल्कुल सही। न रंग न रूप फिर भी सबको देखूं, आईने में मैं ना मिलूं पर हर जगह सबके साथ चलूं।
0: हमारी परछाई।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि जहां हम जाते हैं हमारी परछाई हमारे साथ चलती है। जितना बांटो उतना कम होता है,
0: दुख।
1: बिल्कुल सही कहा, हम जितना बांटते हैं दुख उतना कम होता है, और जितना बांटो उतना बढ़ जाए, वो क्या है?
0: खुशी।
1: अच्छा, तो आपने तो सारी पहेलियों का आंसर ठीक ही दिया है, लगभग 95% पहेलियों का आपने आंसर सही दिया है। तो आप ये बताइए, आपको पहेली वाला राउंड कैसा लगा?
0: बहुत मजा आया, बहुत अच्छा था।
1: तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसा थॉट या कुछ आपके दिल की बात जो आप यहाँ पर इस मंच से आकाशवाणी नजीबाबाद के माध्यम से लिसनर्स को या हमारे युवा साथियों को देना चाहेंगी।
0: मेरा संदेश ये रहेगा कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, और ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर दीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए, लोग आपको पीछे की तरफ खींचते हैं तो उनको आप पीछे ही छोड़ दीजिए, ठीक है? आप अपने काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार खुद को कीजिए, अपने अपनों को कीजिए, अपने परिवार का बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है।
1: आप अपनी लाइफ को कोई हैशटैग देना चाहेंगी?
0: हैशटैग मैं जरूर देना चाहूंगी, हैशटैग देसी गर्ल, मुझे मिला हुआ है।
1: ओके, तो आप देसी गर्ल हैं मतलब।
0: हाँ हाँ
1: अनुराधा, हमारा आपसे लास्ट सवाल जो हमारा फेवरेट भी होता है और जरूरी भी होता है, आपको यहाँ आकर कैसा लगा, आकाशवाणी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का?
0: बहुत मजा आया मुझे सलोनी के साथ बातचीत करके और बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी बातचीत करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं नर्वस नहीं हूँ क्योंकि अब ये प्रोग्राम ही खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए मेरी नर्वसनेस भी गायब हो चुकी
1: हमने
0: है।
1: हमने आपसे कहा था कि प्रोग्राम जब एंडिंग की ओर आएगा तब आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम
0: बिल्कुल,
1: और चलना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके।
1: तो दोस्तों, आज का स्क्रैप बुक का ये पन्ना थोड़ा हंसा, थोड़ा रुका और थोड़ा सोच में डाल गया, क्योंकि हर सवाल का जवाब तेज नहीं होता, कुछ जवाब बस महसूस किए जाते हैं। ऐसे ही पलों, यादों और दिल से निकली बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि स्क्रैप बुक का अगला पन्ना फिर किसी नई कहानी और किसी नए किरदार के साथ होगा। ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए स्क्रैप बुक। इसी के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी को दीजिए इजाजत।
2: जी हाँ दोस्तों, ये तो आपने सुनी अभी अनुराधा और सलोनी की बातचीत स्क्रैप बुक के अंतर्गत। और अब हम देखना ये है कि हमारे साथ गीत आपके नाम में कौन कौन हमारे जो लिसनर्स हैं वो जुड़ चुके हैं। तो सलोनी, कौन कौन दोस्त हमारे साथ जुड़े?
1: हमारे पहले लिसनर हैं अनिल विनोचा जी, जो हमसे जुड़ चुके हैं, और ये हैं नगीना से और शमसी। अनिल विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोरा, सहज अरोरा, गीत अरोरा, और इन्होंने गीत की फरमाइश की है। साथ ही साथ हमें अगली फरमाइश आई है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, और हमें फरमाइशों का सिलसिला और भी मिला है अक्षी। अगली फरमाइश हमें मिली है बाजार रोड मुंगीसापुर से, भेजने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यस मसूरी।
2: और इसी के साथ है हमारे साथ रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, संबलपुर कांकरे से है फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनफ यशफ अब्बासी, रसीद वारसी और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबीहा अंजुमन खान। और इसी के साथ हमारे साथ हैं मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरानी हीना कौसर। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और हमारे साथ है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: दोस्तों अब चलते हैं गीता आपके नाम की आखिरी फरमाइश की ओर और ये हमें आई है बत्ता परिवार से। भेजने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता। अगली फरमाइश आई है हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से। भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कोसार। और फरमाइशकर्ताओं में अगला नाम शामिल है महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद शमशीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलसिफा परवीन। अगली फरमाइश हमें मिली है जनकपुरी सहारनपुर से। भेजने वाले हैं जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। और एक और फरमाइश मेरे पास है जो आई है बालोद छत्तीसगढ़ से और भेजने वाले हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया। अक्षी क्या तुम्हारे पास भी कुछ फरमाइशें आई हैं?
1: बहुत सारी हैं और मैं बोलने मतलब उनके नाम अनाउंस करने वाली हूँ। विलेज एंड पोस्ट राहुंगली आचार्य से हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत। और जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित अहुजा। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेड़ी बेरड़ी से हैं नाना लामसे, मीना लामसे, तेजस लामसे, जय लामसे, हर्षिता लामसे। और जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से हैं बाहर उल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सालिम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी। और बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान जो कि हैं जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं, आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सारे प्रोग्राम्स आने वाले आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप हमारे कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे अक्षी त्यागी
0: और मुझे सलोनी को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा

0: निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सब बहन भाइयों को आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। तो प्रमोद भाई।
1: हाँ झुमरू भैया।
0: अरे कैसे हाल चाल है भाई, सब राजी खुशी?
1: भैया बिल्कुल ठीक है, तुम अपने सुनाओ भैया, सब ठीक ठाक तो?
0: बिल्कुल भाई, देखो सब ठीक ठाक है, सब राजी खुशी है।
1: अच्छा,
0: और भाई खेती बाड़ी भी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है भैया?
1: देखो भैया, खेती बाड़ी ठीक ठाक चल रही है और सब ठीक ठाक है तो बड़ी खुशी की बात है भैया। अपने पशुओं का भी इस टाइम पे ध्यान रख रहे हैं ना?
0: भाई देखो पशुओं का पूरा ध्यान है।
1: अच्छा।
0: और भाई जहां तक बात है पशुओं की, तो भाई नदियां इस टाइम पर उफान पर हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि भैया बहुत ज्यादा बारिश हुई है।
1: जी जी
0: और भाई अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे किसान भाई जो हैं,
1: हाँ।
0: नदियों के आसपास भाई जो हमारी चारे वाली फसल है वो लगाते हैं। और भैया चारे वाली फसलों में पानी आने से, या भैया नदियों के पानी में डूबने से,
1: जी
0: भाई चारे पर थोड़ा संकट सा आ गया।
1: देखो भैया, बरसात के मौसम में ये संकट तो आ ही जाएगा है, लेकिन किसान भाई बड़े समझदार हैं, पशुओं के चारे की व्यवस्था तो भैया वो बराबर करके रखे हैं।
0: भाई देखो ये तो हम रखनी पड़ा है।
1: हाँ।
0: और भाई देखो पशुओं की हम देखभाल कर रहे हैं, साथ ही भैया एक बात ये हो कि देखो जो हमारे खेतों में पानी भर गया
1: जी
0: तो भैया अतिरिक्त जल निकासी की हमें व्यवस्था करनी है।
1: हाँ भैया, देखो अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था तो इसलिए भी करनी पड़ेगी कि अगर हमने अपने खेत में यो व्यवस्था ना करी, पानी खड़ा हो जाएगा तो भैया जो फसल है वो गल जाएगी, सड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो हम अपने खेतों से पानी बाहर निकालना है,
1: जी
0: और साथ ही भाई देखो धान की रोपाई काम भी बिल्कुल सही चल रहा है, तो भाई धान की रोपाई हमें करनी है। और एक बात और भैया,
1: वो क्या?
0: भाई बात ये होगी देखो भैया आज है तारीख 11 जुलाई,
1: अरे भैया नू क्यों ना कहते, आज है शनिवार।
0: भाई देखो शनिवार भी है,
1: हाँ।
0: तो भाई पहले चलो यू ही बात बता दे वो, लेकिन जिक्र तो किसी और ही बात का
1: चलो देखो किसान भाई, शनिवार की बात तो समझ गए, तुम अपनी
0: था।
1: बात बताओ।
0: तो भैया पहले हम शनिवार वाली बात ही बता दें। तो भाई देखो आज शनिवार, और अब हमारे भाई जो हर शनिवार को सुन रहे हैं लोकगीत और रागिनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी,
1: बिल्कुल।
0: तो भाई आज भी हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, और
1: हाँ।
0: हमारे किसान भाई अपनी पसंद की रागिनी और लोकगीत सुन सकते हैं। और भाई इसके लिए नंबर आप बताओ जल्दी से।
1: नंबर तो भैया देखो किसान भाई जाना ही है, नंबर है 94-570-78-288।
0: बिल्कुल
1: और दूसरा नंबर भी तो बता दो।
0: भाई देखो हमारा जो लैंडलाइन का नंबर है वो हो 230-105, और इसे लगाने से पहले भैया आप जो है नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगाओ, और वो है 01341।
1: मतलब 01-3-4-1-2-3-0-1-0-5 यो
0: बिल्कुल
1: नंबर डायल करना है।
0: हाँ भैया इस तरीके से डायल करना।
1: जी
0: तो
1: जी
0: भैया
1: जी
0: अब से लेकर और 6:45 तक आप हमारे स्टूडियो में सीधे फोन करके अपनी पसंद के लोकगीत रागिनी सुन सको।
1: चलो ठीक है भैया, और वो 11 वाली बात कौन सी थी?
0: हाँ। तो भाई देखो अब बात आ गई है 11 जुलाई वाली।
1: जी जी जी
0: तो भाई देखो 11 जुलाई को
1: हाँ,
0: हर वर्ष भैया हम मना रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस।
1: यो बहुत अच्छी बात बताई भैया तुमने।
0: हाँ
1: और भैया देखो, विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने का उद्देश्य यो है कि जो जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, इसको भैया थोड़ा नियंत्रित करा जावे।
0: भाई देखो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने से आप यो सोचो कि केवल एक यो संख्या ही नहीं बढ़ती, कि भी मान लो इतने थे इतने हो गए, भाई
1: जी
0: इससे एक दबाव भी हमारे ऊपर आता है।
1: बिल्कुल
0: और वो
1: बिल्कुल।
0: दबाव यो हो गया भाई देखो हर मनुष्य को भाई जो आधारभूत सुविधाएं हैं, भाई देखो रहने की, खाने की, पीने की,
1: बिल्कुल।
0: ये सारी व्यवस्थाएं चाहिए।
1: हाँ
0: साथ ही भैया हर व्यक्ति को एक रोजगार की आवश्यकता है,
1: बिल्कुल।
0: शिक्षा की आवश्यकता है, तो भाई ये भी हमें चाहिए।
1: जी जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। देखो ये तो मनुष्य के ऊपर बोझ की बात हो गई, और जब मनुष्य के ऊपर बोझ है तो भैया पृथ्वी पे तो अपने आप ही बोझ आ गया।
0: बिल्कुल। तो देखो भैया जब ज्यादा जनसंख्या रहेगी तो भैया ज्यादा पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित होगा,
1: बिल्कुल।
0: ज्यादा पानी भी इस्तेमाल होगा,
1: जी जी
0: ज्यादा
1: जी
0: अन्न इस्तेमाल होगा। और भाई जब ज्यादा जनसंख्या तो भैया उन्हें रहने के लिए मकान चाहिए, और मकान के लिए भैया हमारे जो खेत हैं वो लगातार घटते चले जा रहे हैं,
1: जी
0: उनमें आबादी होती चली जा रही है, और जब आबादी खेतों में हो रही है तो भैया खाद्यान्न उत्पादन तो घटेगा ही।
1: ठीक कह रहे हो भैया। देखो यो बहुत बड़ा संकट है, इस संकट को पहचानना चाहिए और भैया अपनी जो खेती योग्य भूमि है उसको सुधारना चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करने चाहिए, और भाई साथ ही साथ हमें अपने पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है,
1: जी
0: और भैया अगर हमारे परिवार में एक या दो बच्चे होंगे तो भैया उन लिखाने की सुविधा, पढ़ाने की सुविधा और एक अच्छा नागरिक हम तैयार कर सकते हैं। तो भैया इसीलिए भैया अगर हम सुखी रहना है
1: जी,
0: तो भैया बच्चे थोड़े ही बहुत बढ़िया हैं।
1: सही कह रहे हो भैया। देखो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, अपने देश को अगर हमें विकसित देश बनाना है, विकास की ओर आगे ले जाना है, अपना विकास करना है, गांव का विकास करना है, तो भैया इस तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो ये सारी बात हो गई है और अब सुनते हैं कुछ ये जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया,
0: अब वो रागनी तो देख लो।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो देखो संदेश तो हमने सुन लिए।
1: बिल्कुल भैया, संदेश हमने सुन लिए और किसान भाई अब कुछ और सुनने के लिए तैयार बैठे।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो अब बारी आ गई है लोक गीतों में रागनों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी की।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया आओ शुरू करते हैं लोक गीतों में रागनों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज का ये हमारा जो लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम है हेलो लोक मंजरी में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू,
1: और भैया मैं हूँ आपका भाई प्रमोद सिंह। और देखो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। किसान भाइयों के एक बार फिर से हम अपने इस कार्यक्रम का फोन नंबर बता दें।
0: बिल्कुल भैया नंबर बताओ आप जल्दी से।
1: किसान भाई अगर अपनी पसंद की रागनी या कोई लोकगीत सुनना चाहते हैं तो वो हमारे पास में फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 94-570-78-288। और भाई हमारा जो दूसरा नंबर है वो है 01341-230-105।
0: तो भाई देखो नंबर आपने बता दिया हा। और भाई अब देखते हैं कि हमारे पहले भाई कौन है लाइन पर।
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो हेलो।
0: हाँ जी हेलो लोक मंजरी।
2: हाँ जी लोक मंजरी, मेरी दोनों का राम राम, झुमरू का तो
0: हाँ, हेलो
1: जी जी राम राम जी राम राम, हमारी भी राम राम। अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं ग्राम का हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है मदन गिरी जी आपका। सब ठीक ठाक है
2: जी? ठीक ठाक मैं ही नहीं हूँ।
0: अच्छा क्या बात होगी मदन गिरी जी?
2: तबीयत खराब थी मेरी और हॉस्पिटल में एडमिट हूँ मैं, वहाँ से ही फोन कर रहा।
1: अरे चलिए आप अपना ध्यान रखिए और बताइए फिर क्या सुनना चाहोगे आज?
2: बस वो जी वो एक जरा सी बात है जी।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: वो कल जो है प्रोग्राम पेश कर रहे थे ना प्रमोद भाई।
0: हाँ जी।
2: और वो जो है वो उन्होंने उसका नाम पत्रोत्तर।
0: जी जी जी चिट्ठी पत्री।
2: वो जो है वो कह रहे थे कि जो भाई असमर्थ है पत्र भेजने के वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो मैं व्हाट्सएप किया लेकिन मेरा पढ़ा नहीं गया।
0: हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप उस समय ना आ पाया हो।
1: जी जी जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से शायद आप
2: होगी कोई प्रॉब्लम।
1: जी जी जी जी जी देखिए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
2: शिकायत कोई नहीं जी।
0: बिल्कुल। अच्छा देखिए हम एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं मदन गिरी जी।
2: जी जी जी।
0: देखिए आज विश्व जनसंख्या दिवस है और ये जो लगातार विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मदन गिरी जी?
2: मैं जी मैं तो देखो बोलना चाहता था उस दिन जागरूक होता मैं
0: जी।
2: विषय था इस छोटा परिवार सुखी परिवार।
0: जी जी जी, जी।
2: तो उसमें मैं तैयारी कर ली थी पूरी।
0: अच्छा अच्छा।
2: लेकिन 15 मिनट पहले पता नहीं क्या हुआ और जो है ऐलान हुआ वो विषय बदल दिया गया 15 मिनट पहले।
0: जी जी
2: तो
0: कोई बात नहीं आज हम आपको मंच प्रदान कर रहे हैं।
1: एक अच्छा सा संदेश आप दे दीजिए।
2: देखिए जी मैं बताना चाहता हूँ अपना अनुभव
0: जी।
2: देखिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है हमारे देश के लिए गंभीर विषय है
0: जी बिल्कुल।
2: और जो है हमारी जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में दुगनी हो गई है
0: जी बिल्कुल।
2: और जो है मैं बताऊं कि मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं 2 बच्चों के बाद में कोई बच्चा नहीं करूंगा।
0: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: हाँ जी और मैंने किया भी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सुनना
2: मिला?
0: तो क्या सुनना चाह रहे हैं आज इस विश्व जनसंख्या दिवस पर?
2: एक मिनट सुन लो।
0: हाँ जी
2: मैं उसका मुझे लाभ भी मिला
0: जी,
2: आर्थिक लाभ भी मिला, मुझे नौकरी में विशेष इंक्रीमेंट भी मिला और जो है समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ी।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर इस तरीके से सभी इस आपके संदेश को समझ लें और इस तरफ ध्यान दें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बताइए क्या सुनना चाहोगे आप?
2: मुझे सच बता दे राजन तुझे क्यों चाहिए आरा, तेरे आरे से बाडी के चीरूंगा बेटा प्यारा।
1: अच्छा
0: जी बिल्कुल मोड़ धोजा किससे रागनी आप सुनना चाह रहे हैं?
2: हाँ जी हाँ हाँ वही है।
0: तो देखते हैं कि आप हम मोड़ धोजा किससे रागनी आपको सुनवा रहे हैं, कौन सी रागनी आपको?
2: दो चार नाम लेना चाहता
1: हूँ। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: वो आचार्य सत्य वीर जी है और जो है आशीष चौधरी जी है और राशिद अंसारी जी है, प्रकाश चंद जी, अमित दीवान जी, बस यही है।
1: ठीक है जी, जी आप भी सुनिए और अपने सभी इन साथियों को भी सुनाइए अपनी पसंद की ये रागनी।
0: बिल्कुल
2: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, हेलो लोक मंजरी
1: हेलो लोकमंजरी,
2: जी, अपना नाम बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी बोल रहा हूँ सर। सब
2: आमिर अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब ठीक ठाक हैं?
1: बढ़िया है सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया
2: जी
0: जी।
2: बहुत अच्छे हैं।
0: और बताइए, खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपकी? खेती करते हैं ना?
1: नहीं सर, हमारी तो खेती नहीं है सर, पर
0: अच्छा, और
1: ये है
0: क्या
1: कि
0: काम
1: अभी
0: करते हैं आप?
1: हम करते हैं पढ़ाई साथ।
0: पढ़ाई कर रहे हैं?
1: जी
0: अच्छा
1: बहुत अच्छी
0: अच्छा
2: बात है। तो हमारे इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है आपको?
1: मैं आपके सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमने आप कार्यक्रम डिबेट में सुना था तो हमें याद रहा, तभी हमने आपके पास फोन किया।
0: जी जी बहुत
2: धन्यवाद
0: अच्छा है, बहुत
1: आपका।
0: अच्छा है। तो कौन सी
1: हाँ
0: क्लास में पढ़
1: क्योंकि
0: रहे हैं अंसारी जी?
1: मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सर, मैं करता हूँ कढ़ाई का काम।
2: अरे
1: मैं
2: अच्छा अच्छा तो
1: कढ़ाई
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात
1: जी
2: है।
1: जरी का काम करता हूँ मैं,
0: बहुत
1: जो हाथ से
0: बढ़िया
1: बने
2: जी
1: थे।
2: जी तो
1: मैं
2: किस तरह की वो करते हैं आप?
1: करता हूँ, जैसी भी वो फैंसी हो, मीडियम सब के कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा
2: अच्छा
0: अच्छा
2: अच्छा अच्छा
0: बहुत बढ़िया।
1: सर,
0: तो ये काम आपने कहाँ से सीखा है?
1: ये काम हमारे उस्ताद थे, उन्होंने सिखाया था।
0: अच्छा,
1: अच्छा
0: आपने घर पर रहकर ही सीख लिया है?
1: हाँ, घर पे मतलब रहकर ही काम सीख लिया, इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
0: जी।
2: हाँ,
0: अच्छा
1: तो ये काम तो
0: जी, तो अच्छा,
1: ये काम
2: हमारे कुछ युवा हैं, अगर इस काम में आना चाहते हैं तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: देखिए, काम तो सभी अच्छे होते हैं। मैं तो इसके लिए कहना चाहूंगा कि कोई भी काम बुरा नहीं होता, जो आप कर सकते हैं आपके ऊपर वो तो निर्भर करता है। अगर आपको जो लगता है वो आप जरूर करिए।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: बहुत अच्छी बात
0: अच्छा,
2: है।
0: मौसम कैसा है आपके आसपास का, बरेली का?
1: मौसम तो अभी कई दिनों से बारिश हो रही है, हल्की फुल्की, और बादल छाए हुए हैं,
0: अच्छा
1: अभी खुल नहीं रहा है मौसम।
0: अच्छा
1: अच्छा
0: अभी
1: अच्छा
0: भी मतलब हल्की बारिश हो रही है?
1: हल्की बारिश हो जाती है, कभी रुक भी जाता है, तो इस तरीके का भी मौसम है।
0: अच्छा, बहुत।

0: मेरा नौ डांडी का बीजना। तो भाइयों ने सुनाई हरियाणवी लोकगीत। और प्रमोद भाई,
1: हाँ झुमरू भैया
0: भाई देखो लगातार हमारे बहन भाइयों के फोन आ रहे हैं
1: जी जी
0: और लोकगीत और रागनी सुन रहे हैं, तो और भी जो हमारे किसान भाई फोन करना चाहते हैं, अपनी पसंद के रागनी लोकगीत सुनना चाहते हैं, तो आप जल्दी से नंबर बता दो भैया एक बार फिर।
1: बिल्कुल, तो भाइयों आप नोट कीजिए हमारे इस कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 94-570-78-288। और भाई हमारा दूसरा नंबर है 01-34-123-01-05। इन दोनों ही नंबरों पर हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। आप हमारे पास में फोन करके अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुन सकते हैं।
0: और भाई देखो इधर आपने नंबर बताया और इधर हमारे एक भाई का फोन आया।
1: देखो भैया,
0: हेलो।
2: हेलो हेलो सर,
0: हाँ जी हेलो लोक मंजरी।
2: हेलो लोक मंजरी सर।
1: जी जी अपना नाम बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं अमित धीमान बोल रहा हूँ सर, जगतपुर के पास कसौर गांव से।
1: जी जी अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी कैसे हैं?
2: सर हम तो बढ़िया हैं सर, आप बताएं सर कैसे हैं?
0: बहुत
1: बहुत अच्छे
0: बढ़िया जी।
1: हैं।
0: तो एक बात बताओ।

0: अमित जी, क्या काम करते हो आप?
1: सर मेरे पास थोड़ी खेती है
0: अच्छा
1: और थोड़ा अपना मेहनत मेहनत का भी काम कर लेते हैं।
2: बहुत
0: अच्छा
2: अच्छी बात है
0: अच्छा अच्छा है। तो खेती बाड़ी जैसे आपकी है तो उसमें क्या लगा रखा है?
1: सर, हमने मूंजी लगाई है सर।
0: अच्छा, मुंजी लगा दी आपने? कौन सी मुंजी लगाई?
1: शरबती है सर।
0: सरबती।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल, देखिए बिजनौर की तो शान है और जान है सरबती।
2: बिल्कुल। हम तो ये कहेंगे कि बिजनौर की बासमती है ये शरबती।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जी
0: अच्छा, तो ये बताइए कि मौसम कैसा हो रहा है आपके आसपास?
1: सर, मौसम तो कल बारिश हुई थी,
0: जी
1: आज तो फिर गर्मी ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अच्छा, तो अमित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आज हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं, तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: जी सर, हाँ ये तो बात है कि कम बच्चे रहेंगे तो, मतलब दो या बच्चे रहेंगे तो
0: हाँ
1: अच्छी शिक्षा दे पाएंगे हम,
2: हाँ
0: जी,
1: और देश आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा।
0: बिल्कुल
2: बढ़िया
0: बिल्कुल।
2: बात है।
0: तो देखिए, सुखी रहने के लिए छोटा परिवार होना बहुत ही जरूरी है ना? ये बात आप
1: जी
0: मानते हैं?
1: जी जी जी
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाहोगे आप?
1: सर, आज रागनी सुन लेना, महाशय ब्रह्मदेव की आवाज की,
0: जी कौन सी?
1: 20 आदमी कुटुंब के अंदर,
2: अच्छा,
1: आठ
2: आप
1: बीघा कुल, 7 बीघा कुल
2: बहुत
1: धरती।
2: बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित जी, आप आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या को समर्पित ये रागनी भी सुनना चाहते हैं?
1: जी, सर मैं कुछ नाम है मेरे
0: हाँ जी
1: जो मैं
0: बिल्कुल,
1: लेना
0: बोल
1: चाहता हूँ।
0: दीजिए।
2: जी
0: जी
1: जी गांव घरोना सर, मदन गिरी जी, और आचार्य सत्यवीर जी चौहान साहब, राहु नंगली,
2: जी
1: और जी ये हैं हरपाल शास्त्री चिड़ियापुर,
2: अच्छा
1: और
2: जी
1: सारा आकाशवाणी टीम और सारे लिसनर्स हैं जो
2: जी
1: मैं
2: जी
1: नाम सुनने
2: बहुत
1: के लिए।
2: बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप भी सुनिए, अपने सभी दोस्तों को भी सुनवाइए अपनी पसंद की ये रागनी।

0: 20 आदमी एक कुटुंब में, साथ भी कुल धरती। तो भाई ने सुनी रागड़ी महाशय ब्रह्मदेव आर्य से और प्रमोद भाई।
1: जी झुमरू भैया।
0: भाई देखो, खेती बाड़ी अगर हम ठीक ठाक से करें और भैया संतुलित मात्रा में डालें उर्वरक और भैया फसल चक्र अपनाएं, तो भैया हम अपनी खेती से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं।
1: देखो भैया, ये बात तो हम अपने इस कार्यक्रम में रोजाना किसान भाइयों को बताते ही रहे हैं कि भाई किसान भाई अगर कुछ बातों का ध्यान रख लें तो खेती बाड़ी बहुत बढ़िया होगी, खेत हमारे ठीक ठाक रहेंगे, उत्पादन बढ़िया मिलेगा।
0: बिल्कुल भैया, एक भाई हमारे लाइन पर।
1: हेलो।
2: हाँ जी, दोनों भाइयों को राम राम।
0: हाँ जी, राम राम
1: जी, हमारे भी राम राम। कौन बोल रहे हैं जी?
2: हाँ जी, मैं यहाँ ग्राम बपोर रामनंगली, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर से आचार्य सत्यवीर सिंह बोल रहा था।
1: जी आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, बरसात कैसी हो रही है, खेती बाड़ी कैसी है आपके यहाँ?
2: अब खेती बाड़ी साहब बढ़िया होगी, बरसात भी धनधनानन होगी, धान वान के काम भी लगभग निपट गए।
0: अच्छा, तो आपने अपना धान लगा दिया सत्यवीर जी?
2: हाँ जी, हाँ साहब, धान का काम हो गया। अभी प्रभोज जी बता रहे थे कि बिजनौर की बासमती है, सरबती बोल
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही आपने लगाई है सरबती?
2: हाँ जी हाँ, यही लगी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए, अक्सर हमारे किसान भाई अब धान जो है इतनी मात्रा में लगाते नहीं जितना पहले लगाते थे।
2: अब तो अपने खर्चे लग लगा मैं।
0: हाँ देखिए, हमारे किसान भाई गन्ने को ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं और हमारे किसान भाई को चाहिए कि वो हर फसल को अपनाए, है ना?
2: जी जी, ये बात सही है।
1: जी जी
0: बिल्कुल।
1: तो आपके खेत में इस समय धान की फसल खड़ी है, कोई दलहनी फसलें भी आप बोने की तैयारी कर रहे हैं या बोई है?
2: दलहनी तो अभी नहीं बुई थी, वो तो बीच में भादों में था, वो कुछ चरी वरी काट के वो भदवा उड़द भी जाएंगे थोड़ा।
0: अच्छा हाँ। अच्छा, देखिए बिल्कुल, वो भी लगाना बहुत जरूरी है। और उड़द की खेती हम करते हैं तो घर की दाल हो जाती है ना जी?
2: हाँ जी हाँ।
0: और खेत भी हमारा बढ़िया हो जाता है।
2: हाँ, खेत भी बढ़िया हो जाए, फिर वो नान से अपना नया दाल आ जाए तो वो खेली खाने में बड़ा आनंद आवेगा।
1: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो बताओ फिर आज क्या सुनोगे कार्यक्रम में आप?
2: ये चंद्रावल की सुना दियो, जिज्जत तू काला मैं गोरी गली।
1: अच्छा, ये लोकगीत सुनना चाहते हैं हरियाणवी?
0: तो ठीक है जी।
2: और ये एक दो नाम है साहब, ये गदफड़ से मदनगिरी है, कसौर से अमित है, और प्रकाश चंद जी है, और ये राशिद है, और आसिफ चौधरी, और ये नगीना के अनिल बिनोचार, मिसवा शमशी।
1: जी जी, आपके सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सब ये सुनवा रहे हैं।
0: ये रागनी।

0: जी जा तू काला मैं गोरी घनी। तो भाइयों ने सुनाई हरियाणवी लोकगीत। और प्रमोद भाई
1: जी झुमरू भैया
0: भाई देखो कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं
1: जी जी
0: भाई, इनमें मर्यादा का होना बहुत ही आवश्यक है।
1: हाँ भैया,
0: और अगर हम जीजा साली की बात करें, देवर भाभी की बात करें, तो भाई इन रिश्तों की बात ही कुछ अलग है। और जो इसमें आपस में हम
1: हंसी मजाक वाले जो रिश्ते हैं भैया, इसमें हमें जो है अपनी मर्यादाओं से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए हमें मर्यादा बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। और इसी रिश्तों को सजे भैया ये हमारा लोकगीत था, भाइयों ने सुना है। और देखो भैया लगातार हमारे किसान भाई जो है हमें फोन कर रहे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी हमारे पास है और अब आगे हमें समय इजाजत नहीं दे रहा है कि भैया हम और फोन उठाएं।
1: जी जी जी
0: तो चलने से पहले हम भाइयों को बता देते हैं कि भैया हमारा जो ये हेलो लोक मजरी कार्यक्रम होता है, इसे हमारे किसान भाई सुन रहे हैं अब हर प्रत्येक शनिवार को।
1: बिल्कुल, प्रत्येक शनिवार को किसान भाई अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं। नंबर जानते ही हैं, हमारे नंबर हैं 94-570-78-288। और भाई दूसरा नंबर है 01-3-4-1-2-3-0-1-0-5।
0: तो इन फोन नंबर पर हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। और हर शनिवार को सुनते रहिए हमारा ये लोकगीत और रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है
1: हेलो लोक मंजरी।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे लोकगीत एवं रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। और प्रमोद भाई,
1: देखो झुमरू भैया, किसान भाइयों ने ये कार्यक्रम सुना, अपनी पसंद की रागनी सुनी, लोकगीत सुने।
0: बिल्कुल,
1: और भैया अब किसान भाई यो सोच रहे होंगे कि भैया मौसम के बारे में अगर जानकारी सुनने को मिल जाए तो ज्यादा अच्छी रहेगी।
0: तो भाई देखो, जहाँ तक बात है मौसम की, तो भैया मौसम की चिट्ठी हमारे पास है और चिट्ठी हमें मिली है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। और यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार
1: जी
0: भैया जनपद बिजनौर और उसके आसपास के क्षेत्रों के मौसम के बारे में पूर्वानुमान है कि भैया अगले 3 दिन,
1: जी
0: भैया कल यानी कि 12 जुलाई को भैया मध्यम वर्षा होने की संभावना है
1: अच्छा
0: और अगले 2 दिन यानी कि भैया 13 और 14 जुलाई को भैया हल्की बारिश कहीं कहीं पर होने की संभावना है।
1: बिल्कुल। तो हम तो अपने किसान भाइयों को यही कहेंगे कि भाई आप मौसम को देखकर ही धान की फसल की रोपाई करें, और अगर आप दलहनी फसलों की बुआई करना चाह रहे हैं तो भैया वो भी मौसम को देखते हुए ही आप करेंगे, तो आप इन फसलों को ठीक तरीके से बो सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल भाई, देखिए वैसे तो हमें मौसम के हिसाब से सारे काम करने होते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन बरसात के मौसम में अगर हमारे किसान भाई मौसम की रिपोर्ट पर ध्यान रखेंगे, मौसम पर ध्यान रखेंगे और मौसम के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो खेती बाड़ी से हम बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं
1: जी जी
0: और कोई भी नुकसान हमारा हमारी फसल में नहीं होगा।
1: और भाई देखो, हम भी अपने सभी किसान भाइयों और बहनों को रोजाना इस कार्यक्रम में मौसम के संबंध में जानकारी देते रहते हैं। किसान भाइयों के पास में सबके एंड्रॉयड फोन है, बच्चे भी उनके फोन को चलाते ही हैं, तो वो अपने फोन के माध्यम से भी मौसम की जानकारी ले सकते हैं और भैया हमें चिट्ठी में लिख कर बता सकते हैं कि हमारा कार्यक्रम उन्हें कैसा लग रहा है।
0: और भाई चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 246763।
1: इस पते पे हमें आपकी चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। और साथ ही भैया देखो, हम रोजाना कहते हैं कि आप हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, क्या आप सुनना चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन आप चाहते हैं। आप अपनी सारी बातें हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर वही है 94-570-78-288।
0: और भाई इसके अलावा जो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पर हमारी आईडी है उसे आप फॉलो कर सकते हैं और आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम आप उसमें सुन सकते हैं।
1: तो देखो झुमरू भैया, बहुत सारी बातें किसान भाइयों से हो गई हैं और भैया मन तो नहीं करता कि किसान भाइयों के बीच से चला जाए, पर भैया समय के आगे तो मजबूर होना ही पड़ता है, इसलिए जरा आप घड़ी को देख लो।
0: भाई घड़ी तो अब कह रहे कि भाइयों से विदा ली जाए, तो भैया कार्यक्रम को संपन्न करते हुए अब दोनों भैया कर लेते हैं बहन भाइयों से
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज वार्ताकार श्री राजेंद्र शर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी वार्ता, जिसका शीर्षक है लोक कला पंडवानी की प्रवर्तक तीजन बाई।
1: तीजन बाई लोक परंपराओं की जीवित विरासत का अवसान, अपने प्रतिभा संघर्ष और साधना के बल पर छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली पंडवानी को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली 70 वर्षीय तीजन बाई 5 जुलाई की भोर में चिरनिद्रा में सो गई। बरसों से कई बीमारियों से लड़ती तीजन बाई का नियमित प्रस्तुतियों से नाता तो कुछ साल पहले ही छूट गया था। हालांकि न्योते बराबर मिलते रहे, लेकिन बीमारियों से लगभग टूट चुकी तीजन बाई की कांपती और टूटी आवाज में अब मोरे जी के मन्नाही का स्वर ही फूटता था। इस बार निमोनिया ने तीजन बाई को ऐसा जकड़ा कि लगभग शिथिल हो चुकी उनकी देह और सांसों के बीच झूल रहा धागा तमाम कोशिशों के बावजूद टूट ही गया। 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पारथी समुदाय के दंपत्ति बांस बजाने वाले छुनुकराम और बांस गीत गाने वाली सुखवती के घर आंगन में तीज के पर्व के दिन जन्मी बालिका का नाम उसके माता पिता ने तीजन रखा। एक भाई और 3 बहनों में तीजन सबसे बड़ी थी। बालिका तीजन को बचपन से ही महाभारत की कथाओं में गहरी रुचि थी। उसके नाना ब्रजलाल पारथी स्वयं पंडवानी गायक थे और उन्हीं से तीजन में इस लोक परंपरा के संस्कार भीतर तक बस गए थे। गांव गनियारी के पंडवानी गायक उन्मेष सिंह उन्हें महाभारत के प्रसंग याद कराते और रात में तीजन उन्हें गाती। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट लोक कला है। ऐसा कहा जाता है कि पंडवानी शब्द की उत्पत्ति पांडववाणी शब्द से हुई है, जिसमें महाभारत की कथाओं का गायन वाचन और अभिनय एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। कलाकार एक हाथ में तंबूरा या एक तारा लेकर कथा सुनाता है और उसी को कभी भीम की गदा, कभी अर्जुन का गांडीव तो कभी रथ का प्रतीक बनाकर अभिनय करता है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं है, मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्षों का सबसे विराट आख्यान है। पारिवारिक और सामाजिक विरोध के बावजूद तीजन बाई ने 13 वर्ष की आयु में अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम

निकटवर्ती गांव चंद्रखुरी में प्रस्तुत किया, जिसके एवज में 10 रुपये बतौर इनाम मिले। 10 रुपये के इनाम से उत्साहित तीजन के लिए पंडवानी गायन ही जीवन का हिस्सा बन गया। पंडवानी के प्रति अपने गहरे समर्पण के बारे में एक बार उन्होंने छत पर माँ से लिपटे बंदर के एक बच्चे को दिखाते हुए अपने किसी प्रियजन से कहा था, जैसे उस बच्चे ने माँ को पकड़ रखा है, मैंने उसी तरह से पंडवानी को जकड़ रखा है, पंडवानी ही मेरा बेड़ा पार लगाएगी। तीजन बाई की प्रतिभा को शीघ्र ही व्यापक पहचान मिलने लगी। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बड़े मंचों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली पंडवानी को परंपरागत रूप से पुरुष कलाकारों द्वारा खड़े और महिला कलाकारों द्वारा बैठकर गाया जाता था, किंतु तीजन बाई ने इस परंपरा को तोड़ते हुए अपने ओजपूर्ण और प्रभावशाली स्वर में तंबूरे का प्रतीकात्मक उपयोग कर महाभारत के पात्रों का ऐसा जीवंत अभिनय करने में दक्षता हासिल की कि वह पंडवानी का पर्याय बन गई। तीजन की प्रस्तुतियों में विशेष रूप से द्रौपदी चीरहरण, दुर्शासन वध, भीष्म अर्जुन युद्ध तथा भीष्म के पराक्रम जैसे प्रसंग अत्यंत लोकप्रिय रहे। तीजन बाई के हाथ में एक साधारण सा तंबूरा होता था, किंतु वह कभी भीम की गदा बन जाता, कभी अर्जुन का गांडीव, कभी द्रौपदी के खुले केश और कभी युद्धभूमि का ध्वज। एक ही वाद्य उनके हाथों में अनेक रूप धारण कर लेता था। अभिनय, संगीत, कथा और संवाद उनके भीतर इतने स्वाभाविक ढंग से एकाकार हो गए थे कि दर्शक भूल जाता था कि वह किसी प्रस्तुति को देख रहा है या वह स्वयं कुरुक्षेत्र का साक्षी बन रहा है। महाभारत के आख्यान को अनेक विद्वानों ने पढ़ा, अनेक कलाकारों ने मंचित किया, अनेक भाषाओं ने अपनी अपनी शैली में व्यक्त किया, पर तीजन बाई ने उसे लोक के हृदय की धड़कन बना दिया। गायन और अभिनय के अद्भुत समन्वय वाली लोक गायन शैली पंडवानी कला को तीजन बाई ने अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली अभिनय, सशक्त मंच उपस्थिति और महाभारत के पात्रों के जीवन चित्रण कर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल से देश विदेश तक पहुंचाया। यह यात्रा केवल एक कलाकार की सफलता नहीं थी, लोक कला की प्रतिष्ठा की यात्रा थी। तीजन बाई की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे शब्दों के अर्थ नहीं उनकी अग्नि गाती थी। द्रौपदी का चीरहरण उनके स्वर में करुणा नहीं प्रतिरोध बनकर उभरता था। भीम का क्रोध केवल गर्जना नहीं न्याय की भूख बन जाता था। कर्ण का दान केवल उदारता नहीं मनुष्य की नीति का सबसे करुण अध्याय बन जाता था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश के साथ उनकी आवाज में ऐसी बेचैनी भर जाती थी कि श्रोताओं का अपना हृदय भी उस युद्ध में उतर जाता था। वे कथा नहीं सुनाती थी, कथा के भीतर मनुष्य की धड़कन सुनाती थी। महाभारत के पात्रों दुर्योधन, भीम, कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव या और भी किरदारों को तीजन बाई गरजते हुए, करुणा में भीगे हुए अपने कंठ से प्रस्तुत करती तो लगता कि अमुक पात्र ऐसा ही रहा होगा जैसा तीजन बाई अपनी पंडवानी में बयां कर रही है। अपनी पंडवानी के दौरान प्रसंग की समाप्ति पर तीजन बाई बोले बाबा ला प्रणाम, जय जगदम्बा ला प्रणाम पराय गाती और पूरे श्रोताओं में यही पंक्ति गूंजने लगती। तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक गायन शैली पंडवानी को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। तीजन बाई ने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तुर्की, टूनेशिया, मॉरिशियस, रोमानिया और अनेक देशों में अपनी प्रस्तुतियां देकर भारतीय लोक संस्कृति का परचम फहराया। उन्होंने विश्व को यह बताया कि भारतीय लोक कलाएं केवल मनोरंजन भर का साधन नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत और दार्शनिक परंपरा की अमूल्य धरोहर है। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बचपन में स्कूल का मुंह न देख पाने वाली पंडवानी गायिका तीजन को विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 4 बार डिलीट की उपाधि से नवाजा। इसके अलावा जापान ने तीजन बाई को अपने देश का प्रतिष्ठित फुकावो कला पुरस्कार भी प्रदान किया। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान उनके व्यक्तित्व को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उनका व्यक्तित्व इन सम्मानों का गौरव बढ़ाता है। तीजन बाई केवल एक नाम नहीं है, वे हमारे ग्रामीण अंचल की मिट्टी की खुशबू है, लोक भाषा का स्वाभिमान है और उस भारत की पहचान है जिसकी असली ताकत उसके गांव, उसकी बोली और उसके लोकगीतों में बसती है। तीजन बाई केवल एक लोक गायिका नहीं थी, बल्कि वे भारतीय लोक परंपरा की जीवित विरासत थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रतिभा और समर्पण के सामने सामाजिक बंधन टिक नहीं सकते। उनकी आवाज में महाभारत केवल सुनाई नहीं देता था, बल्कि मंच पर जीवित हो उठता।

0: था। पंडवानी को गांव की चौपाल से उठाकर विश्व के सांस्कृतिक मंचों पर पहुंचाने वाली तीजन बाई का जाना एक युग की समाप्ति है। अपनी हर प्रस्तुति के आरंभ और अंत में अपनी बुलंद आवाज में बोल बिंदावल बिहारी लाल की जय का नारा लगाने वाली तीजन बाई ने अंतिम सांस में यही जयकारा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की होगी। लेकिन बरसों से कई बीमारियों से लड़ती रही तीजन बाई का स्वर जाहिर है इस बार थका हुआ होगा।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ताकार श्री राजेंद्र शर्मा की वार्ता, जिसका शीर्षक था लोक कला पंडवानी की प्रवर्तक तीजन बाई। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में फिल्म परवरिश से ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो आइए सुनते हैं परवरिश फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में यह गीत।

परवरिश फिल्म के इस गीत में अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले को। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और इस गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। किशोर कुमार और आशा भोसले की ही आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, फिल्म पेइंग गेस्ट से। संगीत एसडी बर्मन का है और शब्द रचना है एक बार फिर से मजरूह सुल्तानपुरी की।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पेइंग गेस्ट का ये खूबसूरत सा गीत। एस डी बर्मन का संगीत था और शब्द रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पसंद अपनी अपनी से ये गीत सुरेश वाडेकर और साथियों के स्वर में। संगीत बप्पी लहरी का है और गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने।
1: सजे हैं छंदों के सुंदर फूल खिले हैं, मुखरित हो गए सरगम के स्वर, मन बीना के मधुर तार बजे हैं।

कभी कभी डरे ये मन कि तुम कहीं ना हो, नैनों का एक सपना तुम ही कहो न चुप रहो, कि तुम सच हो या कल्पना की कोई छलना।

अगर निखर निखर गई ये बहारें जीवन में, उलझ गई पलक पलक, छलक छलक गया प्यार मेरे तन मन में।

फिल्म पसंद अपनी अपनी से अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडेकर के स्वर में ये खूबसूरत सा गीत। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हुए हैं। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनवाया जाएगा आज रात 10:00। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में अब से कुछ समय बाद 7:32 पर आप सुनेंगे कलाकार वंशिका सोती के गाए भजन। कल सुबह 7:31 पर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रसारित होगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के बारे में। कल दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। फिल्मी संडे कार्यक्रम प्रसारित होगा कल दोपहर 12:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुनेंगे फिल्म जो जीता वो ही सिकंदर की कहानी। बच्चों का लोकप्रिय कार्यक्रम बाल वाटिका प्रसारित होगा कल दोपहर 1:15 पर। कार्यक्रम के अंतर्गत नन्हे हस्ताक्षर क्रम में आप सुनेंगे वरण्या से नंदिनी माहेश्वरी की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम सुनवाया जाएगा कल शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बरसात में साफ सफाई का महत्व, साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी बातचीत होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक भेंट वार्ता भी किसान भाइयों को सुनने को मिलेगी, जिसका विषय होगा मत्स्य पालन तकनीक से लाभ। इस विषय पर श्री अनूप कुमार सिंह से बातचीत करेंगे जितेंद्र कुमार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्य

0: पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
1: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी। और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
0: अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध

0: संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी हैं। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
1: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बीसी पंत ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में चार व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में सात व्यक्ति सवार थे, जिनमें से चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कलाकार वंशिका सोती के गाए भजन।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार वंशिका सोती के गाए भजन। तो लीजिए आनंद लीजिए अगले भजन का।

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार वंशिका सोती के गाए भजन। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक के स्वर में फिल्म जख्म से। एमएम करीम का संगीत है और शब्द रचना है आनंद बख्शी की। तो लीजिए, आनंद लीजिए अलका याग्निक के गाए इस गीत का।

अलका याग्निक के स्वर में ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म जख्म से। एमएम करीम का संगीत था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वर में। नदीम श्रवण ने इस गीत का संगीत निर्माण किया है और शब्द रचना समीर की है। फिल्म का नाम है अग्नि साक्षी।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत संध्या आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से। हिमेश रेशमिया की आवाज़ में ये गीत है, संगीत भी हिमेश रेशमिया का ही है, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। तो आइए आनंद लेते हैं फिल्म सनम तेरी कसम के इस गीत का।

फिल्म सनम तेरी कसम से अभी आप सुन रहे थे। ये खूबसूरत सा गीत हिमेश रेशमिया की आवाज़ में, संगीत भी हिमेश रेशमिया का था और शब्द रचना थी समीर की। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सरफरोश से। जगजीत सिंह की आवाज़ का ये गीत है, जतिन ललित का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजली ने।

सरफरोश। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में। जतिन ललित का संगीत था और शब्द रचना थी निदा फाजली की। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत संध्या के आज के अंक का ये अंतिम गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म थानेदार से। आवाज़ें हैं पंकज उदास, लता मंगेशकर और साथियों की। संगीत पप्पी लहरी का है और गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने। तो लीजिए, आनंद लीजिए पंकज उदास, लता मंगेशकर और साथियों के गाए इस गीत का।

फिल्म थानेदार के इसी गीत के साथ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि और नाम से भी प्रतीत हो रहा है कि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी एक ख़ास फिल्म के गीत हम आपको कार्यक्रम में सुनवाते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साल 2019 में आई फिल्म केसरी के गीत। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी अक्षय कुमार ने और परिणीति चोपड़ा ने। और गीत

को काफी पसंद किया गया था। तो लीजिए, पेश है फिल्म का पहला गीत अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज में। संगीत और शब्द रचना तनिष्क बागची की है।

0: अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत, जिसे संगीत दिया था तनिष्क बागची ने और शब्द रचना भी तनिष्क बागची की ही थी। श्रोताओं, केसरी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और ये फिल्म आधारित है 1897 में लड़ी गई बैटल ऑफ सारागढ़ी पर। बड़ी खूबसूरत फिल्म है और फिल्म का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो कुमार का लिखा हुआ गीत है, संगीत तनिष्क बागची का है और गायक कलाकार हैं रोमी और ब्रिजेश शांडिल्य। तो लीजिए, आनंद लीजिए कार्यक्रम का अगले गीत का।
1: जवान पीछे से गाना गाएगा।

रोमी और ब्रिजेश शांडिल्य की आवाज़ के इस गीत को सुनने के बाद कार्यक्रम में अब बारी है इस फिल्म के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गीत की। ये गीत लिखा गया मनोज मुंतशिर के द्वारा, गायक कलाकार हैं बी प्राक, और इस गीत का संगीत तैयार किया था आरको ने। बड़ा ही लोकप्रिय गीत रहा और भारतीय सिनेमा के सबसे भावुक देशभक्ति गीतों में से एक बनकर उभरा। तो लीजिए, आनंद लीजिए बी प्राक के स्वर में इस गीत का।

0: श्रोताओं, केसरी फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से का ये अंक अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड

0: यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436903084915537414 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में

0: पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में

0: कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रुपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid.

ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए 9 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन पहले ही शाया कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई इस कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। मेघालय के साबिक गवर्नर तथागत राय कमेटी के अरकान में शामिल हैं। यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने की खातिर कमेटी तश्कील देने के बारे में इस महीने की 2 तारीख को काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया था। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय एक फितरी अमर है, लेकिन आईन और अवामी बहबूद के तई अहद मुकदम रहना चाहिए। गया जी में बिहार कानून साज असम्बली के अरकान के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो जमहूरी अकदार, शफाफियत और अवाम के तई जवाबदही को अव्वलीन तरजीह दें। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने एक फर्द की शख्सियत निखारने में लाइब्रेरियों के नुमाया रोल को उजागर करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो लाइब्रेरियों के साथ मुंसलिक हों। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आजादी, मुफक्किर और ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क के लिए काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क और उसके आवाम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जनाब अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर जोर दिया कि वो शहर में सभी लाइब्रेरियों को बाहम मुंसलिक करे और स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ने का एक जामे मंसूबा मुरतब करे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से हुक्मरानी मुस्तहकम होगी, अखराजात कम होंगे और मुल्क की मईशत को फायदा होगा। गोवा में नामानिगारों से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाली 41 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि सरकारों, सियासी पार्टियों, आईनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका अफराद की राय मालूम की जा सके। इस सिलसिले के तहत गोवा ऐसी नवी रियासत है जहां कमेटी के अरकान दौरा कर रहे हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों को बाजाब्ता शक्ल देने की प्रधानमंत्री स्कीम ने पूरे मुल्क में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों के लिए कर्जे मंजूर करने का संगे मील हासिल कर लिया है। मजकूरा स्कीम के तहत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट सरमायाकारी की गई है और रोजगार के तकरीबन 11 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा हुए। आज नई दिल्ली में एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए खुराक को डिब्बा बंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये कामयाबी महज जश्न मनाने का एक संगे मील नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग के फरोग के भारत के सफर के अगले मरहले की एक मजबूत बुनियाद है। जनाब पासवान ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन की शमूलियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे खवातीन की जेरे कमान तरक्की के हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है जो विकसित भारत की बुनियाद भी है। जनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का कर्नाटक के मैसूरू में इंतकाल हो गया। वो 88 साल की थीं। वो ज़ईफ़ुल उम्री से वाबस्ता बीमारियों में मुब्तला थीं। एस जानकी ने 60 साल से ज्यादा के अपने करियर में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 48,000 नगमे गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी जबान शामिल है। एस जानकी को पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया था। उन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इसके अलावा उन्हें 33 स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया।

0: आकाशवाणी से बात करते हुए आईएमडी के साइंसदान डॉक्टर नरेश ने कहा कि आइंदा दो दिनों में मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान है जो ज्यादा से ज्यादा 12 सेंटीमीटर हो सकती है। डॉक्टर नरेश ने मजीद कहा कि कम दबाव के किसी खास हल्के की गैर मौजूदगी के बायस आइंदा 6 से 7 रोज में शुमाल मगरब वस्ती और मुल्क के जजीरनुमा ज्यादातर हिस्सों में बारिश के मामूल से कम रहने की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि अलनीनो की वजह से मुल्क में मानसून की मजमुई बारिश मामूल से कम हो गई है। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: रेलवे और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद को हाई स्पीड रेल मरकज के तौर पर फरोग देने के मंसूबों का ऐलान किया और उन्हें चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों को बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से मरबूत करने की तजवीज पेश की। हैदराबाद में सनद से मुतालिक एक तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से मुल्क के अहम जनूबी इकतसादी मराकज के दरमियान सफर के वक्त में कमी आएगी और कनेक्टिविटी मुस्तहकम होगी। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने अपने वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत का इंतकाम लेने का अहद किया है जो इस साल के अवाइल में अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे और उन्होंने मुल्क की जिम्मेदारी करार दिया। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात मायामी स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात देर गए 2:30 बजे शुरू होगा। एक और क्वार्टर फाइनल मैच में कंसास सिटी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। आज स्पेन के मैड्रिड में तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 4 में भारतीय खवातीन ज्योति सुरेखा वेनम प्रतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी पर मुश्तमिल कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता। फाइनल में तीनों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम कोलंबिया से 228-232 से हार गई। चांदी के इस तमगे के साथ टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में भारत ने अपना खाता खोला है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारती समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी। वियतनाम में कश्ती के एक हादसे में 15 भारतीय अफराद की मौत हो गई है। सदर जमहूरिया नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ताजियत का इजहार किया है। मगरबी बंगाल सरकार ने यकसा सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में नौरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। जनूबी भारत के सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का इंतकाल हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहाँ आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं। इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हमें कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार।

0: सेवक के द्वारा एक रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: त्रिखेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदियां कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पक्षी पंचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, कपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है। पक्षी होता है, मूंग और नारियल का कोरा, जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धारी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्वानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा फोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल। ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
1: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों से एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सकें। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
2: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने पिता भी रिलीज की है। मोस्टली ये अम्रपाली और संचन के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सिंदूरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखे थे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है, और आम के नाम से देखे दिल्ली एक जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर ले वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो आप बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है, और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
4: मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर जो

0: सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उसका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
1: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलियावा लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
2: है। ये आम कुछ खास है। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नेता ये थे हमारे ध्रुव वह के जन्म है वो उसी दिन हम अटारी में रहे फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले वहाँ हमार लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लैका ला छोड़ के चल देवे भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रही हूँ माँ गावे है।

बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सूर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के दनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गए। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारा थे। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो जपरी कहावे। 11-13 के लगभग में रहे हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगा हुए, तो सुने बरा थे कि ये वो छोटे से चटाई निकाली सो कथे में बैठ बेटा में बैठ। अ कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे, तेर के आधार पे ही मैं तेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ तो।

जो जनता जनार्दन के सम्मान हमल्ला मिलते वो गदगद कर देते। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं के स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोह मन लागते भाई। ये बच्चा कथा में हम डूब के उन मन लसनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उमन रोना शुरू कर देते। हम उसका सम्मान पाके अपन आपला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते। हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग के सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है। अब आगे बार मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जो सिला गदा पकड़ के रिंग था तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम के रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हो तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐसी तेती बहका सकत रहे हूँ, उमें अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूल यारो बोल चुचकारो ये गाड़ रही ते गाड़ रही बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत अच्छा लगते, लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा माँ, भूर बिनत सौरी ला भेटे हूँ क्यों टल भेटे हूँ गंगा माँ।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामवरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी इज अकंपनीड बाय श्री महादासु येडकोंडलु ऑन द मृदंगम एंड श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ऑन द घटम।
0: डॉक्टर आर माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी बिगिन्स हर कॉन्सर्ट विद शक्ति गणपतिम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तैया भागवतार इन नाटरागम रूपक तालम।

डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है. शिनेक्स प्रेजेंट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रीति गौड़ रागम त्रिपुट तालम.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Adithalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this, we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the Ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahindragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. The West Bengal government has formed the 9-member committee to examine the draft bill of Uniform Civil Code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagat Roy is one of the members of the committee.